0: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा।
2: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
3: Where the software engineer meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University.
4: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the

0: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा।
2: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
3: हाई रेट चेक द ऑडियो, हाई रेट चेक द ऑडियो।
4: लेट्स डू इट, लेट्स डू इट, लेट्स स्टार्ट।
5: ब्रेकिंग स्टोरी, वी आर जंपिंग स्ट्रेट इनटू इट।
6: वी गॉट अ पिक्चर ऑफ द लेटर।
7: व्हाट इज इन योर लेटर? यू कैन नेवर प्रेडिक्ट व्हाट्स गोना हैपन इन तमिलनाडु पॉलिटिक्स।
8: 21 days in Kashmir. Unfiltered list of things I saw and observed on the ground.
9: Very special ground report from the line of control. There were some children who've lost limbs in the shelling.
10: For a country that has fought so many wars in the mountains and at high altitude.
11: We're standing on the Indian Navy's newest warship.
12: The line of control, Shiv Arur, NDTV.
13: From rural classrooms to global campuses, India's education story is changing. The question is simple. How do we make every child future ready? Visionaries, disruptors, policymakers, one big conversation charting the future of India's young minds. NDTV Learn Next Conclave, 25th May, only on NDTV.

0: Amid the ongoing conflict in West Asia, petrol and diesel prices have increased once again. Right now, I have arrived at a petrol pump station in the East District area of the national capital. Behind me, you can see the window here. The increased price of petrol is 99.51 rupees. So right now, if you see, 87 paise has increased on petrol prices, and on diesel prices, what we have got to learn that 91 paise has increased. This is early morning, early 7 a.m. Over here at petrol pump. Right now, I'm joined by the staff of this very petrol pump. मुझे बताइए कि 10 दिनों के अंदर तीसरी बार जो है वो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं. 15 मई को 3 रुपए बढ़े थे, फिर 19 मई को 87 पैसे बढ़े, फिर आज जो है 87 बढ़े. भीड़ जो है पेट्रोल पंप पे बढ़ रही है, लोगों की कम हो रही है, तनाव दिख रहा है क्या?
1: नहीं, भीड़ तो जैसी होती है नॉर्मल वैसी है और कंटिन्यू चल रही है जैसे चलती है. बाकी कोई दिक्कत नहीं है. बाकी बंदे जहाँ से भी आ रहे हैं उनको बताया जा रहा है कि हाँ भाई जल्दी यहाँ मिल जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी कुछ नहीं है.
0: जो सप्लाई चेन है उसमें कोई बाधा है, रुकावट है?
1: हमारे यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है. हमारे यहाँ डेली जो सप्लाई आती है डेली आ रही है और कंटिन्यू पेट्रोल चालू है.
2: The price of petrol and diesel has once again been hiked in less than 3 days. The hike is from 87 to 91 paise. We're right now at a petrol pump. We'll try to show you the visuals of the current price that can be seen here at a petrol station in Delhi. The prices were in fact increased up to 91 paise per litre on Saturday, that is today, which is the third increase in less than 10 days. Petrol price has been increased by 87 paise, which has now pushed the price from 98.64 to rupees 99.51 per litre. Diesel rates have gone up by 91 paise from 91.58 to rupees 92.49. This is the third increase in the rates since May 15, when state-owned oil companies started passing on elevated energy prices arising from the West Asia conflict in a calibrated manner. Now we have seen prices were hiked by rupees 3 a litre on May 15, followed by a 90 paise increase on May 19. In all, rates have now gone up by almost 5 rupees per litre. We'll also try to speak to some people. आपका नाम क्या है सर?
3: रावेंद्र कुमार.
2: हम देख रहे हैं कि 10 दिनों के अंदर पेट्रोल और डीजल के जो दाम है उसमें करीब 5 रुपए का फर्क अब देखने को मिल रहा है. 5 रुपए ज्यादा महंगी हो गई है चीजें.
3: महंगी तो हो गई, अब क्या करें, बहुत महंगी हो गई. इतना तो मालूम कितना वो मुश्किल हो पा रहा है. अब
2: बजट पे कितना असर पड़ रहा है?
3: अब डीजल पेट्रोल अगर महंगा होगा तो जो जितनी इकोनॉमी घूम रही है ना, तो सारी चीजें महंगी होगी ना. सबसे बड़ी व्यवस्था तो यही है.
4: Well, this isn't good news at all. It's the third time that these prices have gone up. It is a direct consequence of the war. The ceasefire right now, but still the state of uncertainty in West Asia. And the big concern now is that will Donald Trump, the US president, order strikes once again? The possibility in the last 24 hours is strong, some would suggest. Pradeep Datta joins us from Jammu. Akhil over here in Delhi. Pradeep, to you first. What are some of the reactions that you have around you?
5: See, right now, Vishnu, I am at the Jammu petrol pump, and the story right from Jammu to Jaipur, Kashmir to Kanyakumari, Srinagar to Siliguri remains same. And people here know what is the reason for the increase in the petrol as well as diesel prices. That's one of the reasons they know that the government will not be able to do much in this. You know, let me talk to the people here and try to find out how it is really going to impact their budget.
6: जो अमीर है उनके लिए तो कुछ नहीं है, जिनके पास छोटी मोटी गाड़ी है उनके लिए बोल.
5: कैसे आपके बजट पे कट करोगे?
6: बहुत कोई बोल नहीं सकते इतना.
5: सो यू कैन सी हाउ द लाइफ इज रियली बिकम डिफिकल्ट बिकॉज कर्टसी दैट आवर वेस्ट एशियन कॉन्फ्लिक्ट. यस, नेक्स्ट टाइम हमने देखा.
4: All right, we'll come back to Pradeep in a moment. The audio seems to be a bit unclear. Let's quickly go across to Akhil as we sort out the audio with Pradeep. Akhil, what are reactions around you?
7: Well, Vishnu, if you see right now, I'm at a petrol pump in East Delhi. Behind me, you can see the visuals over here. Right now, I'm joined by the people over here who have got the voices on ground. ये मुझे बताइए कि पेट्रोल और डीजल का दाम जो है एक बार फिर से बढ़ गया है. पेट्रोल का दाम 87 पैसे बढ़ा है. आप जो है जेप्टो का टी शर्ट पहन के जा रहे हैं, तो ये आप वहां काम करते हैं, जेप्टो में काम करते हैं, कितना फर्क पड़ रहा है पॉकेट पे आप लोगों का?

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी। मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
2: बदलता नहीं अब बढ़ता पंजाब, नवे पंजाब का नवा स्वैग लेकर आ रहा है NDTV नवा पंजाब समिट। शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरियां, विकास की हकीकत और नवा पंजाब के मिशन पर मंच साझा करेंगे सरकार के दिग्गज और पंजाबी कलाकार। देखिए मान मैजिक माननीय मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के साथ सिर्फ NDTV पर।
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
5: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
3: Where the software engineer meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University.
4: बदलता नहीं, अब बढ़ता पंजाब। नवे पंजाब का नवा स्वैग लेकर आ रहा है NDTV नवा पंजाब समिट। शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरियां, विकास की हकीकत और नवा पंजाब के मिशन पर मंच साझा करेंगे सरकार के दिग्गज और पंजाबी कलाकार। देखिए मान मैजिक माननीय मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के साथ सिर्फ NDTV पर।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी। मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
2: बदलता नहीं अब बढ़ता पंजाब, नवे पंजाब का नवा स्वैग लेकर आ रहा है NDTV नवा पंजाब समिट। शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरियां, विकास की हकीकत और नवा पंजाब के मिशन पर मंच साझा करेंगे सरकार के दिग्गज और पंजाबी कलाकार। देखिए मान मैजिक माननीय मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के साथ सिर्फ

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: बदलता नहीं अब बढ़ता पंजाब, नवे पंजाब का नवा स्वैग लेकर आ रहा है एनडीटीवी नवा पंजाब समिट। शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरियां, विकास की हकीकत और नवा पंजाब के मिशन पर मंच साझा करेंगे सरकार के दिग्गज और पंजाबी कलाकार। देखिए मान मैजिक माननीय मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के साथ सिर्फ एनडीटीवी पर।

0: at a petrol pump. We'll try to show you the visuals of the current price that can be seen here at a petrol station in Delhi. The prices were in fact increased up to 91 paise per litre on Saturday, that is today, which is the third increase in less than 10 days. Petrol price has been increased by 87 paise, which has now pushed the price from 98.64 to rupees 99.51 per litre. Diesel rates have gone up by 91 paise from 91.58 to rupees 92.49. This is the third increase in the rates since May 15, when state-owned oil companies started passing on elevated energy prices arising from the West Asia conflict in a calibrated manner. Now, we have seen prices were hiked by rupees 3 a litre on May 15, followed by a 90 paise increase on May 19. In all, rates have now gone up by almost 5 rupees per litre. We'll also try to speak to some people. Aapka naam kya hai, sir?
1: Ravindra Kumar.
0: हम देख रहे हैं कि 10 दिनों के अंदर पेट्रोल और डीजल के जो दाम है उसमें करीब 5 रुपए का फर्क अब देखने को मिल रहा है। 5 रुपए ज्यादा महंगी हो गई हैं चीजें।
1: महंगी तो हो गई, अब क्या करें, बहुत महंगी हो गई। इतना तो मालूम कितना वो मुश्किल हो पा रहा है। अब
0: बजट पे कितना असर पड़ रहा है?
1: अब डीजल पेट्रोल अगर महंगा होगा तो जो जितनी इकोनॉमी घूम रही है ना, तो सारी चीजें महंगी होगी ना। सबसे बड़ी व्यवस्था तो यही है।
2: The prices of petrol and diesel have now hiked again with 90 paise per litre, and this is the third hike in the last 10 days, where the initial two hikes were on May 15 and May 19, where it was increased by 3 rupees and 1 rupees per litre respectively, and today it has been increased by 90 paise a litre, the third increase in the last 10 days. Sir, what will you say? ये तो महंगाई बढ़ती ही जा रही है।
3: उसमें कोई कुछ नहीं कर सकते हैं, महंगाई बढ़ी तो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। पहले भी बढ़ती थी, ये कभी कम हुई नहीं है, और भी बढ़ेगी।
2: यानी आप इससे ठीक है कि पिछले 10 दिन में 3 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं?
3: ठीक है अभी मैडम, उसमें तो मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। हाँ। वो तो कोई भी सरकार है, गवर्नमेंट है, वो बढ़ानी है तो बढ़ानी है, चाहे पब्लिक का तो कोई सुनने वाला तो नहीं है।
2: और महंगाई भी हम देख रहे हैं कि दूसरी चीज़ों को लेकर भी बढ़ रही
3: है। हाँ, वो तो बढ़ेगी
2: मैडम। मतलब आपको लगता है कि महंगाई बढ़ती रहेगी और बढ़ते रहना चाहिए?
3: नहीं, बढ़ते रहना नहीं चाहिए ऐसा नहीं बोल सकता हूँ। महंगाई तो बढ़ेगी, लेकिन जो ज़रूरतमंद जो चीज़ें हैं उसका भी दाम बढ़ा देते हैं इन लोग। पहला जो पब्लिक का जो इंटरेस्ट है, जो जिसको जो उसी चीज़ पे पहला इन लोग अटैक करते हैं।
2: और भी लोग हैं, इनसे जानेंगे। भाई, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं, क्या कहेंगे?
4: दिन भर दिन बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई करते जा रहे हैं गवर्नमेंट।
2: 10 दिन में तीसरी बार दाम बढ़े हैं, आज 1 रुपये बढ़ गए। आपको लगता है कि इससे आपकी जेब पर असर पड़ेगा?
4: पड़ेगा ना,
2: पड़ेगा।
4: हाँ, पेमेंट नहीं बढ़ रहा है, यहाँ पे गवर्नमेंट बढ़ाती जा रही है सब दाम, सब चीज़ को।
2: वही है। कुछ और लोग हैं भाई, आपसे जानेंगे, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं, क्या बोलेंगे?
5: अभी बढ़ तो गए, हम लोग के लिए दिक्कत है ना, हम तो ऑनलाइन काम करते हैं, रोज का इतना महंगा डालेंगे तो क्या इससे कमाएंगे, क्या डालेंगे? उतना तो कंपनी भी नहीं देती है कि हाँ चलो हमको प्रॉफिट होगा। अब 108 6 था, 8 हो गया, एक महीने में ही 2-3 रुपये बढ़ गया, उसमें 3 रुपये बढ़ गया। अब ये 15 तक जाएगा कि 20 तक जाएगा, नुकसान तो हमारा है ना।
6: In less than 10 days, there has been hike in petrol and diesel prices in India. Courtesy blockade of state of Hormuz, because of which there has been disruption in movement of vessels and ships carrying oil and natural gas from that side, because of which we have seen the prices of the crude oil has increased. And we have seen that the first hike was on May 15, followed by the second hike on May 19, and now again there has been hike in petrol and diesel price this time by almost 87 to 90 paisa. And definitely this is going to drill big hole in the pockets of common man. They are right now concerned and worried because they don't see any respite in the situation, keeping in view the West Asia crisis. Most of the people we had been interacting with, they are saying that they are trying to adopt several austerity measures. They are even going for cost cutting, but that's not really going to serve the purpose. Let me talk to some people here and try to find out how they see the hike in the petrol and diesel prices here in this region. I'll talk. कैसे देखते हैं ये पेट्रोल और डीजल के जो प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, कैसे आप देख रहे हैं इसको?
7: सर, ये मजबूरी है इस टाइम, गवर्नमेंट की मजबूरी है, क्योंकि हमारे पास ऑयल स्टॉक्स नहीं है, बाहर से इंपोर्ट होते हैं, तो अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट को प्राइसेस को इंक्रीज करना पड़ता है।
6: आपको कैसे ये मुश्किल पड़ रही है एक आम आदमी को, जब देखें आपका बजट को कैसे
8: पॉल्यूशन।
7: बजट हिट होता है लेकिन हमें मजबूरी

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा,
4: सबका राजा आर्द्र मसाला।
5: बदलता नहीं अब बढ़ता पंजाब। नवे पंजाब का नवा स्वैग लेकर आ रहा है NDTV नवा पंजाब समिट। शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरियां, विकास की हकीकत और नवा पंजाब के मिशन पर मंच साझा करेंगे सरकार के दिग्गज और पंजाबी कलाकार। देखिए मान मैजिक माननीय मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के साथ सिर्फ NDTV पर।

आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे अक्रॉस द कंट्री ही हैज ट्रैक्ड द पल्स ऑफ पावर फ्रॉम वॉशिंगटन टू कोरिया विटनेस्ड हिस्ट्री बीइंग मेड इन ग्लोबल कैपिटल्स एंड कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन्स

0: 3 रुपए एक बार, लगभग 1 रुपए एक बार, लगभग 1 रुपए फिर कल रात, आज सुबह, यानी 5 रुपए लीटर बढ़ा दिया। और परसों ही तो मीटिंग करके कहा था हालात नियंत्रण में। मोदी जी, आपको अपना भाषण याद है जो 2014 के चुनाव में आप देते थे कि मनमोहन सरकार ने महंगाई बढ़ाई है, हम आएंगे तो 30 रुपए लीटर पेट्रोल, आपने तो 100 रुपए के आसपास पहुंचा दिया। पूरी तरह आप असफल हो गए हैं और मैं इल्जाम लगाता हूं ये सारी बढ़ोतरी आपकी गलत विदेश नीति और आर्थिक नीति के कारण हो रही है।
1: Shifting focus now to United States, a chilling report in the New York Post has revealed an assassination plot against U.S. President Donald Trump's daughter, Ivanka Trump. According to the New York Post report, the accused, an Iraqi national named Mohammed Bakir al-Sadi, was behind the plot and wanted to kill Ivanka Trump to avenge the death of Iranian General Qasem Soleimani. The report says the accused was trained by the IRGC and issued social media threats to Ivanka across the social media time and again. The accused is said to have been in possession of the blueprint of Ivanka Trump's Florida home, where Jared Kushner has been living as well, along with Ivanka, and was also behind several attacks on American and Jewish targets as well. Well, we are trying to investigate this further, but so far in the investigation, it has been revealed that there were several attacks in the past in Europe, in UK, in Canada, and different parts of the world where Mohammed al-Sadi was also involved. Of course, there is no formal statement by the FBI, CIA, or any other wing of the U.S. Secret Service or investigations, but we track this story very closely. And now breaking news coming in here on NDTV. Iran's Araghchi, the foreign minister, has held talks with Pakistan's army chief Asim Munir in Tehran. Iranian foreign minister Abbas Araghchi has held talks with Pakistan army chief Asim Munir on Friday in the Iranian capital. The pair exchanged views. In fact, now breaking news coming in. Prime Minister Narendra Modi is speaking on the 19th Rozgar Mela. Let's cut in.
2: आज 51,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र मिला है। आज आप सभी देश की विकास यात्रा में अहम भागीदार बन रहे हैं, जिम्मेवार भागीदार बन रहे हैं। रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, हेल्थ, एजुकेशन और दूसरे कई क्षेत्रों में आप सभी नई जिम्मेदारियां संभालने जा रहे हैं। आने वाले वर्षों में विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने में आप सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। साथियों, यहां तक पहुंचने के लिए आप सभी ने लंबी तैयारी और कड़ा परिश्रम जरूर किया होगा। इस उपलब्धि के लिए मैं आपको भी और आपके परिवारजनों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपको यहां तक पहुंचाने में आपके माता पिता और परिवार का योगदान कम नहीं होता है, लेकिन इतना भी सही है कि जैसे परिवार का योगदान होता है, समाज का भी बहुत बड़ा योगदान होता है हमें यहां पहुंचाने के लिए। हम सिर्फ अपने कारण नहीं पहुंचते, सिर्फ अपने परिवार के कारण नहीं पहुंचते, इस विशाल देश के 140 करोड़ नागरिकों के योगदान का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। और इसलिए हमारा दायित्व खुद के प्रति, खुद के परिवार प्रति, वैसे ही संपूर्ण समाज के प्रति भी रहता है। और मुझे विश्वास है कि इन सभी कामों के लिए आप अपने आप को और अधिक योग्य बनाएंगे। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आप सबको पता है अभी 2 दिन पहले ही

मैं 5 देशों की यात्रा कर करके लौटा हूं। कहने को तो ये सिर्फ 5 देशों की यात्रा थी, लेकिन इस दौरान मेरी दर्जनों देशों की बड़ी बड़ी कंपनियों के लीडर से बातें हुई, विस्तार से चर्चा हुई, मुलाकात हुई, और हर जगह मैंने एक बात समान रूप से महसूस की है, दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले। इस यात्रा के दौरान अब जैसे नीदरलैंड की मैं बात करूं तो नीदरलैंड्स के साथ सेमीकंडक्टर्स, वाटर, एग्रीकल्चर और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग पर चर्चा हुई। स्वीडन के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और डिजिटल इनोवेशन, उस पर सहयोग की बहुत सारी बातें हुई। नॉर्वे के साथ ग्रीन टेक्नोलॉजी और मैरीटाइम कोऑपरेशन की बात आगे बढ़ी है। UAE के साथ स्ट्रेटेजिक एनर्जी और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप पर महत्वपूर्ण समझौते हुए। इटली के साथ डिफेंस, क्रिटिकल मिनरल्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऐसे अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पार्टनरशिप्स पर एग्रीमेंट हुए। साथियों, इन सारे एग्रीमेंट्स का सीधा लाभ भारत के युवाओं को मिलने वाला है। और आपने देखा होगा कि सारे विषय एक उज्जवल समर्थ भारत के भविष्य की गारंटी लेकर के आते हैं, क्योंकि हर नया निवेश, हर टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, हर इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन भारत के युवाओं के लिए नई अपॉर्चुनिटीज तो लेकर के आता ही है, लेकिन अनगिनत नए अवसर तैयार करता है। मेरे नौजवान साथियों, हमें याद रखना है ये वो सेक्टर्स हैं जिनमें आने वाला इन्वेस्टमेंट और पार्टनरशिप आने वाले 3-4 दशक की ग्लोबल ग्रोथ को ये शेप करने वाली इंडस्ट्री तैयार करेगी। और निश्चित तौर पर भारत के युवाओं की इसमें बहुत बड़ी भूमिका होगी। साथियों, भारत किस तरह दुनिया का एक भरोसेमंद सप्लाई चेन पार्टनर बन रहा है, इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर कंपनी, आप में से बहुत लोग इस नाम से परिचित होंगे, ASML, ASML के साथ भारत की टाटा कंपनी का एग्रीमेंट है। भारत दुनिया के कुछ ही देशों में से एक है जिसके साथ
इस कंपनी ने समझौता किया है। एएसएमएल टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच ये अकेला समझौता ही भारत में रोजगार के अनगिनत नए मौके बनाएगा और भारत को एक नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी में प्रवेश द्वार खोल देगा। ऐसे ही स्वीडन के साथ टेक्नोलॉजी और एआई पार्टनरशिप्स, यूएई का साथ सुपर कंप्यूटिंग कोऑपरेशन भारत की टेक्नोलॉजी क्षमता को बहुत मजबूत करने वाले हैं। इन एग्रीमेंट से युवाओं के लिए नए अवसर तो होंगे ही होंगे। साथियों, आज क्लीन एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स, ग्रीन हाइड्रोजन और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े सेक्टर्स भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इनसे जुड़ी पार्टनरशिप एक नई इकोनॉमी के न्यू अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल रही है। स्वीडन, नॉर्वे और इटली जैसे देशों के साथ ग्रीन ट्रांजिशन और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी में भी सहयोग बढ़ रहा है। ये भारत को क्लीन मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी फ्यूचर इंडस्ट्रीज में मजबूत करेगा। इसके अलावा भारत ने पोर्ट्स, शिपिंग और मैरिटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े एग्रीमेंट पर तेजी से काम किया है। यूएई और नॉर्वे के साथ पार्टनरशिप से भारत का शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम मजबूत होगा। और आप तो जानते हैं, शिप बिल्डिंग यानी स्किल मैन पावर की बहुत जरूर पड़ती है। यानी भारत के इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और स्किल्ड वर्कर्स के लिए इतनी मांग बढ़ने वाली है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। कितने अवसर तैयार होंगे। साथियों, हर नई पार्टनरशिप के साथ हम भारतीय स्टार्टअप्स, रिसर्चर्स और यंग प्रोफेशनल्स के लिए दुनिया से जुड़ने के नए रास्ते बना रहे हैं। इससे भारतीय युवाओं को एडवांस एक्सपर्टीज, ग्लोबल मार्केट्स और ग्रोथ के नए मौके भी मिलेंगे। आज दुनिया उन देशों का सम्मान करती है जो इनोवेट करते हैं, जो बिल्ड करते हैं और जो बड़े स्तर पर डिलीवरी कर सकते हैं। भारत आज इन तीनों दिशाओं में तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस परिवर्तन की सबसे बड़ी ताकत आप सब मेरे नौजवान साथी हैं, भारत का युवा है। और मैं दुनिया में जहां भी जाता हूं, मैं काफी समय चर्चा में भारत की युवा शक्ति की चर्चा करता हूं। साथियों, आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन
तैयार।

तैयार की जा रही है। आने वाले समय में भारत की 10 बड़ी सेमीकंडक्टर यूनिट्स दुनिया में अपना परचम लहराएगी। इनमें बड़ी संख्या में भारत के नौजवानों का सामर्थ्य होगा, भारत के नौजवानों की बुद्धि प्रतिभा होगी, भारत के नौजवानों का कमिटमेंट होगा और स्वाभाविक है रोजगार तो है ही है। भारत आज शिप बिल्डिंग से लेकर शिप रिपेयरिंग और ओवरहॉलिंग का भी इकोसिस्टम विकसित कर रहा है। इसके लिए करीब 75,000 करोड़ रुपए 75,000 करोड़ रुपीज का निवेश किया जा रहा है। इसी तरह भारत में ही हम पूरा एमआरओ इकोसिस्टम यानी मेंटेनेंस, ओवरहॉल और रिपेयर फैसिलिटीज तैयार कर रहे हैं। इससे देश के एविएशन सेक्टर को बहुत मदद मिलने वाली है और भारत के युवाओं के लिए रोजगार का नया सेक्टर तो खुलना ही खुलना है। साथियों, भारत आज एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर है और हम इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी कंप्लीट वैल्यू चेन भारत में ही बना रहे हैं। इसके लिए जो पीएलआई स्कीम चल रही है उससे देश में रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन हो रहा है और युवाओं को लाखों की संख्या में जॉब्स भी मिल रही है। साथियों, ऐसे अनेकों अभियानों पर भारत का पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलकर बहुत बड़ा निवेश कर रहा है। ये निवेश

उस नाते आपको भी हमेशा ये ध्यान रखना है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देश की कितनी बड़ी प्राथमिकता है। साथियों, भारत की ग्रोथ स्टोरी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इसमें ये मानी हुई बात है, आप भी जानते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। जब गांव, छोटे शहर और दूर दराज के इलाके विकास से जुड़ते हैं, तभी देश की प्रगति का लाभ ज्यादा लोगों तक पहुंचता है। पिछले 12 वर्षों में रेलवे, हाईवे, एयरपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, पोर्ट्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर कल्पना भर का तेज गति से विस्तार हुआ है, विकास हुआ है, हर स्तर पर काम हुआ है। आज आप अपने क्षेत्र में किसी की भी दिशा में 100 किलोमीटर अगर जाएंगे तो भारत सरकार द्वारा कोई न कोई काम चलता हुआ नजर आएगा आपको। आज गांवों में भी बदलाव तेजी से दिखाई दे रहा है। कनेक्टिविटी बढ़ने से किसानों, छोटे व्यापारियों, विद्यार्थियों के लिए नए रास्ते खुले हैं। आज करोड़ों परिवारों को पक्का घर मिला है। यानी दुनिया के कई देश हैं जिनके पास टोटल घर होते हैं उससे अनेक गुना घर हम नए बनाते हैं। इतना ही नहीं, जो मेरा स्वच्छता का अभियान है उसको तो मैं कभी भी भूलने नहीं देता हूं लोगों को, और न ही मैं भी भूलता हूं। उसमें शौचालय की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, हम उस पर भी बल दे रहे हैं। करोड़ों घरों तक आज बिजली पहुंची है। रूफटॉप सोलर एनर्जी, कितने नए नए वेंडर्स मैदान में आए हैं। अब देखिए, जल जीवन मिशन से नल से जल पहुंचाना, मैं अभी देख रहा था कि मैं चाहता था कि शहरों में पीएनजी के कनेक्शन बढ़े, तो मुझे प्लम्बर नहीं मिल रहे थे, कमी पड़ रही थी, क्योंकि जल जीवन के मिशन में कई सारी बड़ी संख्या में प्लम्बर वहां लगे हुए थे। अब इधर मुझे एनर्जी के लिए बड़े शहरों में पीएनजी के कनेक्शन तेजी से बढ़ा रहे थे। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कभी कभी तो लोगों की जरूरत पड़े तो लोग कम पड़ जाते हैं। साथियों, इन बदलावों का असर सिर्फ सामान्य नागरिकों की सुविधाओं तक सीमित नहीं रहता। गांव तक सड़क पहुंची तो मार्केट तक आना जाना आसान हुआ, बिजली की सुविधा बेहतर हुई तो छोटे उद्योग धंधे आगे बढ़ने लगे, गांव में भी एग्रीकल्चर में वैल्यू एडिशन होने लगा। पहले अगर वो लाल मिर्ची बेचते थे, अब बिजली आई तो लाल मिर्ची का पाउडर बनाते हैं, पाउडर बना करके पैकेज बनाते हैं, पैकेज बना करके बेचते हैं। तो गांव में भी छोटे छोटे छोटे छोटे उद्योग इसके कारण बढ़ते जाते हैं। डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ी तो गांव के लोग भी पूरे विश्व के साथ जुड़ रहे हैं, आधुनिकता से जुड़ रहे हैं। शहर और गांव का फर्क मिटता चला जा रहा है और इससे अर्थव्यवस्था की गति तेज हुई है। और इन सब का पॉजिटिव प्रभाव देश के नौजवानों के उज्जवल भविष्य की गारंटी बन जाता है। रोजगार तो निर्माण होते ही होते हैं, लेकिन राष्ट्र भी एक नए स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ जाता है, लाखों लोगों को नए मौके भी मिल जाते हैं। साथियों, आज भारत के युवा के पास जिस तरह से आगे बढ़ने के, अपने सपने पूरा करने के मौके हैं, ऐसा अवसर

पहले नहीं मिला है, मैं किसी का दोस्त नहीं कर रहा हूं, लेकिन हकीकत है कि आज बहुत तेज गति से सब हो रहा है, विशाल फलक पे हो रहा है, विविधताओं से भरा हो रहा है। आज मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, डिजिटल सर्विसेज, रेलवे, डिफेंस, इतना ही नहीं स्पेस, ऐसे अनेक क्षेत्रों में अनगिनत अवसर हमारा इंतजार कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा युवा नए अवसरों का लाभ उठा सके और देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा मौका मिले। इसलिए स्किल डेवलपमेंट, इंडस्ट्री लिंक्ड एजुकेशन और फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर लगातार जोर दिया जा रहा है। IITs को मॉडर्न बनाया जा रहा है, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को मजबूत किया जा रहा है, पीएम सेतु जैसे अभियान इसी दिशा में काम कर रहे हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में देश में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप की एक नई संस्कृति विकसित हुई है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। देश में 2,30,000 से ज्यादा, ये आंकड़ा याद रखिए, 2,30,000 से ज्यादा रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स हैं और उसमें भी दो चार नौजवान भी जुड़े हुए होते हैं। अहम बात यह है कि ये बदलाव सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है और मुझे इसका सबसे ज्यादा आनंद है। आजकल तो Tier 2 और Tier 3 शहरों के युवा भी बहुत बड़ी संख्या में स्टार्टअप और इनोवेशन की दुनिया में अपना ताकत दिखा रहे हैं, उनके सामर्थ्य की नोट लेनी पड़ रही है। ये परिवर्तन अब देश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस बदलाव में हमारी नारी शक्ति की भूमिका भी लगातार बढ़ रही है। आज बड़ी संख्या में विमेन लेड स्टार्टअप्स, ये जब सुनते हैं ना मन गर्व से भर जाता है। मैं जब दुनिया के लोगों को बताता हूं कि हमारे यहां स्टार्टअप में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका बढ़ रही है, बहुत बड़ी मात्रा में महिलाएं आगे आ रही है, मुद्रा योजना के तहत करोड़ों महिलाओं को फाइनेंशियल सपोर्ट मिला है, पीएम स्वनिधि जैसी योजनाओं ने भी लाखों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया है। आज गांवों में, छोटे शहरों में पहले से ज्यादा महिलाएं अपने दम पर नए काम शुरू कर रही हैं। साथियों, नीतियां और निर्णयों के इस अभियान के बीच आपको एक और बात याद रखनी है, किसी भी व्यवस्था की असली ताकत उसके लोग होते हैं, जनता जनार्दन की शक्ति होती है, जनशक्ति होती है और जनशक्ति ही तो राष्ट्र शक्ति बनती है। आप सभी जिस व्यवस्था का हिस्सा बनने जा रहे हैं उसका सीधा संबंध करोड़ों देशवासियों के जीवन से है, करोड़ों देशवासियों की आशा आकांक्षाओं से है। सरकारी नौकरी लोगों के जीवन को आसान बनाने का माध्यम ही होती है।

0: across West Asia. The West Asia war has induced pressure on the global energy market. India seeing a third hike in fuel prices in a span of just 10 days. Diesel prices have been hiked by 91 paise per litre, whereas petrol has been hiked by 87 paise per litre. CNG too has seen a hike of 1 rupee per kg. The first hike occurred on the May 15th, as you remember, the second just days later on May 19th, and now the third hike has occurred today, which is the May 23rd. In the national capital, petrol prices are nearing the 100 rupee mark, with the price now standing at 99.51 rupees. In fact, Kolkata, the petrol prices has breached the 110 mark and now stands at 110.56 rupees. Diesel rates too have seen a hike. In Delhi, diesel stands at 92.49 rupees. Chennai sees the highest rate at 97.09 per litre. Let's get you ground reports even as we speak about this entire crisis in the country, but all across the globe. India has the lowest increase in prices. But remember, viewers, this is the third major hike that has happened. Now, Vikas from Jaipur and Raman from Patna get us this ground report on NDTV.
1: Petrol diesel prices has been revised today once again. In last 10 days, petrol diesel prices has been hiked third time this time. In Jaipur, petrol is increased by 93 paise per litre and diesel has been increased by 91 paise per litre. Now the latest prices are here. 109 rupees 87 paise per litre is petrol and 95 rupees 9 paise per litre is diesel. It's going to impact a little bit to the common man because petrol and diesel directly affects the customer, let's hear to this man. Sir, kya naam hai aapka?
2: Ramutar Soni.
1: Ramutar ji, bataiye ki petrol diesel ke price bade hain, daam bade hain. Kareeb ek saptah ki baat karu, main pichle 10 din ki baat karu, to 5 rupaye tak badh gaye hain. Kya farak padega aapki jeb par?
2: Kuch bhi farak nahi padega, kya padega? Kya farak padega? Aise hamare 5-10 kilometer chalti hai. 500 रुपए का पेट्रोल एक महीने चलते हैं हमारे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा.
1: कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके? और कोई आपके व्यापार में कोई फर्क पड़े?
2: व्यापार में तो पड़ेगा.
1: कैसे पड़ेगा?
2: व्यापार में डीजल पेट्रोल महंगी चीजें आएंगी तो फर्क तो पड़ेगा उसमें तो.
3: देश भर में आज फिर से एक बार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हुआ है. 10 दिन के भीतर आज तीसरी बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं और इस वक्त हम पटना के एक फ्यूल स्टेशन पर है जहाँ पर आप भीड़ भी देख सकते हैं. लोग काफ़ी जल्दबाजी में है अपनी टैंक को फुल कराने की और पटना में जो दाम है आज वो 110 रुपए के पार पहुँच चुका है. यहाँ पर जो पेट्रोल ले रहे हैं उन्हीं से बात करेंगे. कितना असर पड़ रहा है 10 दिन में तीसरी बार दाम बढ़े हैं?
4: बहुत असर पड़ रहा है इसका तो. इसका महंगाई पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है. इतना जल्दी जल्दी दाम नहीं बढ़ना चाहिए था. तुरंत
3: फुल करवा पा रहे हैं टैंक?
4: नहीं, फुल नहीं करा पा रहे हैं.
3: फुल नहीं करा पा रहे हैं.
5: 5 से लेके 110 हो गया ना? कितने दिन में? एक हफ्ते में? 10 दिन में. तो इतना हाइक होने का मतलब क्या हुआ? ये तो पॉकेट खाली कर देगा ये. और एवरेज भी गिर गया है पेट्रोल का. पेट्रोल जितना माइलेज देता था पहले 20% इथेनॉल देने के बाद ख़त्म हो गया वो.
0: Now over to Game of Thrones now happening in Punjab from the south of India. Major political storm has erupted after former cricketer and Rajya Sabha Member of Parliament Harbhajan Singh launched a blistering attack on the Aam Aadmi Party. Remember, viewers, just a few days back, quite a few members of the parliament from the Aam Aadmi Party had crossed over to the BJP as a major setback to Arvind Kejriwal and the Aam Aadmi Party. Hitting back at those calling him a traitor, Harbhajan alleged that the Rajya Sabha seat from Punjab was sold and claimed he could reveal details of alleged kickbacks and beneficiaries. In a strongly worded post on social media, Harbhajan further accused Aam Aadmi Party leaders of appointing ministers and officials solely to loot Punjab and funnel money to party bosses. The explosive allegations have triggered a fresh political controversy in Punjab, with the opposition expected to corner Aam Aadmi Party over these remarks. So far, there has been no detailed response from the Aam Aadmi Party or its leadership on the Harbhajan Singh's allegations. Let's listen in to the political reactions on this major political controversy in Punjab.
6: ये तो जग जाहिर है कि पहले भी आम आदमी पार्टी ने सीटें बेची थी और जो उनके पुराने कार्यकर्ता थे उनको नजरअंदाज कर सीटें बेची थी. कुमार विश्वास हो, वो आशुतोष हो, वो युगेंद्र यादव हो, प्रशांत भूषण हो, सबको नजरअंदाज कर नए लोगों को सीटें दी थी और सबकी ऐसी जानकारी में आता है कुछ न कुछ व्यापारिक काम हुआ था उस सब में. परंतु जो मूल बात है कि आम आदमी पार्टी की प्रवृत्ति ही वैसी है, वह पार्टी की जगह व्यापारिक पार्टी है, आम आदमी पार्टी की जगह व्यापारिक पार्टी है।
7: A huge massive claim has been made by former Aam Aadmi Party Raj Sabha MP and very famous cricketer, one of our legends, Harbhajan Singh, that Aam Aadmi Party sold its Raj Sabha seats to the highest bidder. AAP does not mean Aam Aadmi Party, it means aur adhik paisa, aur adhik paap of bhrashtachar. Aam Aadmi Party also sold the ministries and sold positions in official places so that Punjab could be looted. This disclosure has been made. It's a very serious disclosure. And therefore, now we are seeing that in Punjab, every second week, there is a new arrest, there is a new case of corruption, and Aam Aadmi Party leaders are involved. This means that the entire focus was to loot Punjab. Look at the situation of Punjab today.
8: देखिए, हरभजन सिंह एक अचीवर है और जो अचीवर आम आदमी पार्टी ने लिए थे उसमें बाबा सीचेवाल से बिक्रमजीत सानी थे और हरभजन सिंह थे। ये कहना गदार है मेरा ख्याल है, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी की फितरत है कि जो उनके साथ होता है वो दूध का धुला होता है, जो अगर किसी के साथ चला गया वो गदार हो गया। क्योंकि ये कांग्रेस से भी बहुत से लोग लेके गए हैं, जो अदरवाइज भी बहुत से लोग इन्होंने इधर उधर से किए हैं, लेकिन बात इतनी सी है कि बीजेपी जिसमें ये गए हैं, अब हरभजन सिंह उनके पास है। मेरा ख्याल है कि बीजेपी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिल्कुल खुलेआम लोगों को बताना चाहिए कि हाँ भी इन्होंने क्या क्या डील कैसे कैसे की है और लाला जी पंजाब से कितना माल लेके गए हैं।
0: And slipping into a short break here on NDTV, but news and bulletins continue on the other side.

0: or its messaging on regional stability, maritime cooperation, and the evolving geopolitical balance in the Indo-Pacific. Now, even as we stay on this entire big story, as Marco Rubio lands in Delhi, my colleague Shreyasi Day spoke to the sisters of and from Missionaries of Charity. Let's listen into this exclusive.
1: Sister, how was the meeting, sister? How was the meeting, sister?
2: Sister, very good. You can ask the sisters. They are in charge of this whole
1: thing. Okay, but it was such an important visit. It was such an important visit. We've never seen such a high official from the US embassy coming over here from the government. Were the children excited to meet him?
2: Yeah, yeah. Children were so excited.
1: And the prayers went well, sister?
2: All thing was very good.
1: Thank you. So very, very tight-lipped. But what a significant visit of the U.S. Secretary of State, Marco Rubio, here in Kolkata, kick-starting his India visit from the Missionaries of Charity here in the City of Joy.
0: And now the big focus towards the mystery around the death of Tvesha Sharma. Remember, this happened 11 days ago, and NDTV has been continuously covering all angles of this big story. And now there is some big development coming at this hour. Anil Sharma, the additional DCP of Bhopal, has said that Samar did not surrender. The police arrested him. This is a twist that has come to the saga around Tvesha Sharma's death and the main accused in this case, which is her husband, Samar. The additional DCP Anil Sharma says the police have arrested Samar Singh, the prime accused in the Tvesha case. He did not surrender. It was the Bhopal police themselves who travelled to Jabalpur. A medical examination has been conducted and Samar Singh will be taken into police remand for 7 days. It took 10 days because the accused's objective is to hide, while the police objective is to apprehend him. Teams had been constituted for this purpose. The police did not cause any delay. That's the version coming in from the Bhopal police. There was no negligence on the part of the Bhopal police. The incident is tragic. The legal proceedings applicable in cases of dowry death have been duly initiated. And the entire material was not, in fact, sent along with the body during the post-mortem examination. This matter has been misrepresented. These are the details coming in from the Bhopal police viewers. We'll try and get our, you know, reporters on this big story. But following the incident, Tvesha's family members took her body to the hospital. The police arrived at the crime scene following day. This is Bhopal police's defense in Madhya Pradesh regarding the Tvesha Sharma case. But my colleague Anurag Dwari, in fact, spoke to the additional police commissioner in this case. Let's listen.
3: बहुत सवाल उठ रहे हैं. एक तो 10 दिन तक समर सिंह पुलिस को चकमा देता रहा. ट्रायल कोर्ट या आयोग के सामने सरेंडर करना था, ऐसा उसने हाई कोर्ट में कहा, लेकिन पहुंच गया जबलपुर और वहां भी पहले मीडिया पहुंची, बाद में पुलिस पहुंची और तब उनके गिरफ्त में आया.
4: बहुत सारे प्रश्न आपने एक साथ किए हैं. पहले उत्तर में आपके गिरफ्तारी के संबंध में देता हूँ. गिरफ्तारी के संबंध में अपराध पंजीबद्ध के बाद तत्कालीन पुलिस की टीमें बन गई थी और सभी जगह उसे ढूंढा गया था. और पुलिस के प्रयास से ही और पुलिस भोपाल पुलिस की खबर से ही जबलपुर के अंदर हमने खबर की और जबलपुर से भोपाल पुलिस इसे गिरफ्तार करके रात में लाई है. इसकी गिरफ्तारी के उपरांत इसका मेडिकल परीक्षण कराया गया है और अभी संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत करके 7 दिन का पुलिस रिमांड भी मांगा जा रहा है.
3: क्या कोशिश की जाएगी पुलिस रिमांड के दौरान पूछताछ में, क्या किस हद तक पहुँचने की या किन सवालों के जवाब जानने की?
4: आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद प्रकरण से संबंधित सभी साक्ष्य का संकलन किया जाएगा. उसके मोबाइल हैं, पासपोर्ट्स हैं और कैसे घटना घटित हुई उस टाइम पे, उसका लोकेशन, बहुत सारे बिंदु रहते हैं रेलिवेंट जो प्रकरण को प्रमाणित करते हैं. उन संबंध में बारीकी से पूछताछ की जाएगी और सबूत इकट्ठे किए जाएंगे.
0: And that is yet another exclusive. NDTV speaking up from Bhopal. Remember, viewers, it's been 11 days since Tvesha Sharma's death and the mystery only continues. After evading the law and the police for about 10 days, Samarth has been arrested from Jabalpur, brought to Bhopal. He will be produced in a local court in a few minutes from now. And the police in Bhopal will be seeking a custody remand for 7 days. Let's see if that happens. But this is the big development coming at this hour. A senior police official from Bhopal has spoken to my colleague Anurag Dwari of NDTV and given details of the arrest. He says that Samarth did not surrender. It was an arrest by the Bhopal police that had tracked him down, and his entire modus operandi was to in fact hide on this entire story. And now we have some more details that we are picking up. We have the commissioner, in fact, joining us on the phone line. Tanushree, in fact, is joining us on the phone line, and Tanushree will get us more details. She has been reporting from the Bhopal court. Tanushree, what's the latest that you're picking up? In a few minutes from now, the accused will be brought into the court. The police will be seeking 7 days of custodial remand. What is the objective of the police in the questioning that will follow?
5: Yeah, so basically talking about this whole entire case, police main motive is to find out some certain questions, because for the past 10 days, Samad was been missing, and yesterday he came to Jabalpur court where Bhopal police arrested him and brought him back to Bhopal. And today in Bhopal court, he would be presented where police would be asking for 7-day remand.
0: All right, Tanushree getting us the latest. But what is the, you know, version of the family? Giribala Singh has been reportedly speaking every single day, trying to create some kind of a narrative in defense of Samarth. But what have you heard from the mother-in-law of Twisha and the family? But right now I'm being told that the Bhopal commissioner is speaking live. Let's cut in.
6: मेडिकल करवा के और ऑनरेबल कोर्ट से पीआर लेंगे
7: सर कितने दिन का रिमांड की डिमांड करने वाले हैं सर
6: हम 7 days का रिमांड मांगेंगे
7: इसके अलावा सर अभी क्या पूछताछ में कुछ उसने बताया कि कहाँ था इतने दिनों तक क्योंकि देर रात खुद को लाया गया क्या पूछताछ में उसने बताया कि वो शहर में था भोपाल में ही था या भोपाल के कहीं बाहर था
6: नहीं काफ़ी लेट नाइट उसको लेके आए हैं और अभी तो कुछ प्रोसीजर में भी टाइम लगता है तो अभी तो और पूछताछ करेंगे उसके बाद ही कुछ कह सकते हैं
8: सर 30,000 का उस पर इनाम था और 10 दिनों तक वो फरार रहा तो इस दौरान जिन लोगों ने उसको शरण दी उनकी क्या कोई पहचान होगी या फिर उनके खिलाफ भी कोई कानूनी कार्रवाई होगी
6: नहीं बिल्कुल वो जब डिटेल में उनसे पूछताछ होगी तो उसके बाद अगर कुछ इस तरह की चीज आती है कि उसको किसी ने शरण दी है तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी
8: 30,000 का जो इनाम है आपका ये किस मतलब इसकी इसके लिए आदमी आपका स्पेसिफाई हो गए जिसने सूचना दी या
6: नहीं ये तो क्या है वहाँ जबलपुर में कोर्ट में पहुंचा था सरेंडर करने कोर्ट ने सरेंडर करने से मना कर दिया इसी बीच अपनी टीम भी उधर थी तो फिर अपनी टीम ने इसको जबलपुर टीम की मदद से कस्टडी में लिया तो अभी तो वो देखा जाएगा कि बेसिकली ये कोर्ट में सरेंडर करने आया था तो अभी किसी और व्यक्ति का तो ऐसा रोल नहीं है
8: अपना आपको अंदेशा था कि कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचेगा और आप प्लानिंग थी इसको इस तरह से अरेस्ट करने
6: नहीं देखो हम तो लगे हुए थे कि हमें तो कहीं भी मिल जाए तो हमें तो आइडिया नहीं था कि ये कोर्ट में जाएगा हाँ ये ज़रूर है कि अगर एंटीसिपेटरी बेल कैंसिल होती है तो मे बी एक ऑप्शन रहता है लेकिन हम सभी पहलुओं पे काम कर रहे थे
8: सर 6 टीमें लगी थी पूछताछ जो भी अभी तक हो पाई है रात देर आए हैं तुम समझ सकते हो कि ज़्यादा वक्त नहीं मिला होगा लेकिन इसमें कुछ इसने बताया कि कहाँ था कैसे चकमा देता रहा
6: नहीं अभी उतना नहीं देखो इस तरह की पूछताछ में टाइम लगता है हम इसे पूछेंगे और ये सारी बात जो है ना थोड़ी कुछ ही टाइम में सब सही बता देगा सारी चीज़ें वेरीफाई करनी पड़ती हैं रात को 3 बजे तो काफ़ी लेट नाइट तो आया है फिर प्रोसीजर होता है मेडिकल करवाना पड़ता है कई तरह की चीज़ें होती हैं
9: सर एम्स दिल्ली का कहना है कि अभी तक उनके पास कोई पत्र नहीं पहुंचा है जिस वजह से वहां से टीम यहां रवाना नहीं की गई है PM2 के लिए
6: नहीं ये ऑनरेबल कोर्ट ने GAD को लिखा है तो हम GAD और से भी कोऑर्डिनेट करके हमारी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी टीम आ जाए
9: पत्र यहां से जा चुका है क्या
6: नहीं GAD ने भी संबंधित को उधर GAD भी अपना काम कर रही है और हम भी GAD के टच में हैं
8: सर एग्जैक्टली हम ये समझना चाह रहे हैं कि पोस्टमार्टम और भोपाल एम्स में ही होगा या बॉडी को दिल्ली एम्स लेकर जाएगा
6: नहीं एम्स भोपाल में होगा मतलब वहाँ की एम्स दिल्ली की जो एक्सपर्ट टीम है वो भोपाल आएगी
10: सर परिजन लगातार आरोप लगा रहे हैं कि थाने में अभद्रता की गई है इसकी कुछ जाँच करा रहे हैं कोई कार्रवाई से करेंगे
6: नहीं किसी के साथ कोई अभद्रता नहीं की गई थाने में भी CCTV लगे हुए हैं इस तरह का कुछ नहीं
8: हाइट को लेके क्या है सर ट्विशा की हाइट को लेके परिजनों का कहना है कि उसकी जो एक्चुअल हाइट प्रोफाइल वो थी वो प्लस और उसके अलावा आपने जो पोस्टमार्टम में हाइट आई उसमें फ़र्क है
6: नहीं देखो ये इस तरह की चीज़ें इन इसका जो आप विषय बता रहे हैं हाइट का जो है ना वो ये कोई सिग्निफिकेंट चीज़ नहीं है
7: सर गिरिबाला सिंह को लगातार नोटिस जारी हो रहे हैं लेकिन वो कोऑपरेट नहीं कर रही आज भी नोटिस भेजा गया
6: नहीं, वो हमने इसलिए एंटीसिपेटरी बेल कैंसिलेशन का लगाया था, बाकी हमारी कोशिश है उनसे भी जल्दी से जल्दी पूछताछ करनी।
11: गिरीवाला सिंह का कहना है कि मुझे कोई नोटिस नहीं मिला है
12: अब तक। कितने
6: हमने नोटिस दिए हैं उनको?
12: कितने सर?
6: नहीं, हमने 3 नोटिस दिए हैं उनको।
11: तो वो डिनाई कर रही है, डिनाई कर रही है सर वो?
6: नहीं, अब वो डिनाई कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन हमने नोटिस दिए हैं।
12: चीफ होल्डिंग जुडिशियल पोस्ट फॉरवर्ड जज और एक आप भी एक जिम्मेदार अधिकारी हैं कमिश्नर पुलिस भोपाल में, आप कह रहे हैं 3 नोटिस दिए हैं, वो कह रहे हैं कि हमें अभी तक एक भी नोटिस नहीं मिला और कल पहली बार शायद उन्होंने स्वीकार किया कि ये पहला नोटिस आया है। तो ये इस एनोमली पे क्या कर गया?
6: नहीं, एनोमली नहीं है, हमने 3 नोटिस दिए हैं, वो एक्यूज्ड है एक इनियस ऑफेंस में, हमने 3 नोटिस दिए हैं, हमारी कोशिश है जल्दी से जल्दी पूछताछ करने की।
9: तो सर फिर एक सवाल वही पैदा होता है कि हीनियस क्राइम है, आप खुद बता रहे हैं, तो इसमें नोटिस के हाथ भी नहीं आ रही है, तो आपकी टीम जाके क्यों नहीं पूछताछ कर रही? सिर्फ रिटायर्ड एजेंट इसलिए एक आम आदमी के साथ तो ऐसा नहीं होता है।
6: एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है क्योंकि वो और एंटीसिपेटरी बेल कैंसिलेशन के लिए इसीलिए हमने कोर्ट में लगाया है।
12: सर एक कहीं ना कहीं भोपाल पुलिस को ऐसा लगता है कि परिवार ने आरोप लगाया कि भोपाल पुलिस ने सारा काम अच्छे से नहीं किया, ये परिवार का आरोप है कि उसमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से लेकर से लेके उसके बाद उन्होंने कहा दूसरी इंक्वायरी मांगी कि कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी, फाइनली उसमें सीबीआई इंक्वायरी राज्य सरकार ने की। कहीं आपको ऐसा लगता है कि हाँ कुछ लैप्सेस थे?
6: नहीं, कोई लैप्सेस नहीं थे, हमने अपनी निष्पक्ष जाँच की है और बिल्कुल सही तरीके से की है और सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं। ठीक है जी, धन्यवाद।
9: आज इंटरव्यू नहीं देंगे सर।
11: नमस्कार।
0: All right, that's the latest from the Commissioner of Police in Bhopal regarding the Twisha Sharma case. Some very significant and pointed questions being asked by journalists, including NDTV out there, about how was a special kind of treatment given to Giribala Singh, who is the mother-in-law of Twisha Sharma, because had this been a common person or a common man, there would have been an arrest that would have followed immediately. Then why such a delay of 11 days? Why was such kind of an approach by the Bhopal police or the Madhya Pradesh police? But the police on its part says that they have followed procedure. They will be in fact going to the court where Samarth will be produced, and thereafter the legal procedures will continue. They have also appealed the court for the bail of the mother-in-law to be cancelled. Let's see if that happens or not. Tanushree joins us live on this story. Tanushree, the Bhopal police commissioner did make some very important points out there. Could you elaborate on what he was asked and how he tried to defend the police version in this entire saga?
13: So during press conference of police, there were many specific questions that were being questions specifically about the treatment Samarth have been getting at the jail and why there was a delay of 10 days, 11 days for arresting him. It is a certain amount of period because Twisha's death was being questioned again and again on 12th May when Twisha was found hanging on the terrace of her matrimonial house. Many questions were raised that how and when this happened, because at the same time she was in contact with her parents, and there was CCTV footages also being showcased from the beauty parlor where she was seeing relaxing. Many certain things were being visible. But when Twisha's husband, when we were talking about Twisha's husband, he was been missing for past 10 days. The question was still over there that why there was a delay to arrest him for 10 days, 11 days yesterday when he went to Jabalpur court. Police, Bhopal police arrested him from there, and from Bhopal he was from Jabalpur he was brought to Bhopal at midnight at 2 a.m. 3 a.m. and after that he was kept at Katara Hills police station under high security, and now anytime soon he would be brought here at the district court where police would be asking for the remand of 7 days. Talking about Girbala's house, so the legal team which reached Girbala's house while talking to media, they said that 7-day remand is not needed, 1-day remand can be is also enough for questioning the certain stuffs that have been raising again and again. Certainly where Samarth was for past 10 days, 11 days, why Madhya Pradesh government police or the Bhopal police was unable to catch him, was it because of the high profile connections he was having? So there are many questions that have been arising, and during press conference also these questions were being raised by the media and NDTV also, and now it has been visible that very anytime soon he would be brought over over here after the medicals have been done at the government hospitals. Police would be asking for the remands. Many questions are still unanswered. So police would be interrogating and the revelations will be done very time soon.
0: All right. The investigation continues. Samarth in court in a few minutes from now. And then the custodial remand and the interrogation will continue. Tanushree getting us the latest. Thank you very much for joining in. But viewers, 10 days after Twisha Sharma's death, absconding husband Samarthing has been finally surfacing before the court. In the latest, NDTV has accessed exclusive images of the terrace where Twisha's body was found inside her in-law's home. The High Court has ordered a second post-mortem by a team of Delhi AIIMS doctors at Bhopal AIIMS. Samarth arrived at the Jabalpur court with his face covered before being taken into the police custody yesterday. He has now been shifted to Bhopal and will be produced before the court later today, where cops will demand 7-day custody of Samarth. Bhopal police is also expected to seek Samarth's custodial interrogation. Investigators are likely to examine call records, digital evidence, and reconstruct the sequence of events leading up to Twisha's death. Let's listen in to these reactions that we are picking up on this story.
14: सब आपके नॉलेज में है, सरेंडर कर दिया है, अब हम लीगल रेमेडी एग्जॉस्ट कर रहे हैं, आप सबके साथ हैं, सबके साथ खड़े हैं, कोई मना नहीं कर रहे हैं, हर जगह खड़े हैं, एटलीस्ट हम हमारा लीगल राइट तो यूज़ करें, सरेंडर नहीं हुआ, एंटीसिपेटरी नहीं मिली, हम सरेंडर कर गए, अब हम रेगुलर बेल में जाएंगे.
0: All right, that was the latest on the Twisha murder mystery. But NDTV promises you to keep a close track on all investigative angles. It's time to slip into a short break, but news and bulletins continue. Keep watching.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
5: Across the country, he has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network.

0: Trump, the US president, order strikes once again. The possibility in the last 24 hours is strong, some would suggest. Pradeep Datta joins us from Jammu, Akhil over here in Delhi. Pradeep, to you first. What are some of the reactions that you have around you?
1: See, right now, Vishnu, I am at the Jammu petrol pump, and the story right from Jammu to Jaipur, Kashmir to Kanyakumari, Srinagar to Siliguri remains same. And people here know what is the reason for the increase in the petrol as well as diesel prices. That's one of the reasons they know that the government will not be able to do much in this. Let me talk to the people here and try to find out how it is really going to impact their budget.
2: जो अमीर है उनके लिए तो कुछ नहीं है, जिनके पास छोटी मोटी गाड़ी है उनके लिए बोल।
1: कैसे आपके बजट को कट कर रहे
2: हो? बहुत कोई बोल नहीं सकते
1: कितना। सो यू कैन सी हाउ द लाइफ इज रियली बिकम डिफिकल्ट बिकॉज़ कर्टसी दैट्स आवर बेस्ट इशू कॉन्सेप्ट एंड ट्राई फाइट अबाउट द थिंग लसन ने हमने देखा।
0: All right, we'll come back to Pradeep in a moment. The audio seems to be a bit unclear. Let's quickly go across to Akhil as we sort out the audio with Pradeep. Akhil, what are reactions around you?
3: Well, Vishnu, if you see right now, I'm at a petrol pump in East Delhi. Behind me, you can see the visuals over here. Right now, I'm joined by the people over here who have got the voices on ground. ये मुझे बताइए कि पेट्रोल और डीजल का दाम जो है एक बार फिर से बढ़ गया है। पेट्रोल का दाम 87 पैसे बढ़ा है। आप जो है जेप्टो का टी शर्ट पहन के जा रहे हैं, तो ये आप वहां काम करते हैं, जेप्टो में काम करते हैं, कितना फर्क पड़ रहा है पॉकेट पे आप लोगों का? बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। आपका जो पैसा है वो पैसा बढ़ाया इन लोगों ने, कंपनी वालों ने पैसा बढ़ाया, तो जितनी कमाई पहले हो रही थी उतनी हो रही है कैसे? ऑर्डर कम लगते हैं और तेल ज्यादा लगता है। 15 मई को हमने देखा था 3 रुपए बढ़ा, उसके बाद 87 पैसे फिर बढ़े, फिर उसके बाद आज जो है 87 पैसे बढ़े, 3 बार में तकरीबन 5 रुपए के आसपास पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं। तो आप लोगों ने कंपनी वालों से शिकायत की कि पेट्रोल का
0: नेक्स्ट
3: तो क्या बोलते हैं कंपनी वाले? तो क्या क्या कहते हैं आपके मैनेजर?
0: Move away from Akhil for a moment.
4: Higher end, check the audio.
5: Let's do it.
6: Breaking story, we're jumping straight into it.
7: We've got a picture of the letter.
8: What is in your letter?
9: You can never predict what's going to happen in Tamil Nadu politics.
10: 21 days in Kashmir. Unfiltered list of things I saw and observed on the ground.
11: Very special ground report from the line of control. There were some children who've lost limbs in the shelling.
12: For a country that has fought so many wars in the mountains and at high altitude.
13: We're standing on the Indian Navy's newest warship.
14: The line of control, Shiv Arur, NDTV.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये ही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
5: बदलता नहीं अब बढ़ता पंजाब। नवे पंजाब का नवा स्वैग लेकर आ रहा है एनडीटीवी नवा पंजाब समिट। शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरियां, विकास की हकीकत और नवा पंजाब के मिशन पर मंच साझा करेंगे सरकार के दिग्गज और पंजाबी कलाकार। देखिए मान मैजिक माननीय मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के साथ सिर्फ एनडीटीवी पर।

0: visual impairment in a movie. You talking about accessibility and the curriculum. See, all what we are doing in terms of our mission on Dettol, Swachh Bharat Abhiyan, is it reaching to everyone? It isn't. Because everything that we learn is by seeing or hearing. And it is a learned behavior. हम अपने माँ बाप को देखते हैं, बड़े भाई बहनों को देखते हैं, वो हाथ धो रहे हैं, वो शेव कर रहे हैं, वो खाना खा रहे हैं, एंड वी लर्न विद दैट. बट व्हेन यू हैव अ डिसेबिलिटी, अ विजुअल डिसेबिलिटी और डेफ ब्लाइंडनेस और मल्टीपल डिसेबिलिटी, वे यू कांट कॉम्प्रीहेंड कि क्या हो रहा है मेरे सामने, आप कोई भी दूसरी चीज़ सिखाने जाएंगे नहीं सीखेगा. तो एक्सेसिबिलिटी हमको इसी में लाना है कि किस तरह से हम इसको टच बेस्ड बना सकें. क्योंकि ब्लाइंड बच्चा, यू नो मोर देन मी, ब्लाइंड बच्चा स्पर्श से सीखता है, टच करके सीखता है. ऑब्जेक्ट्स को हमको उनको देना है, छोटे छोटे इंडिकेटर्स देने हैं. अगर हाथ धोने का समय है, हर हाथ धोने के पहले उसको हम अगर सोप डिश दें, ताकि वो समझ सके इस सोप डिश के बाद उसको साबुन दिया जाएगा, पानी, और वो हाथ धोएगा. अगली बार वो सोप डिश लेके आपके पास आ सकता है कि ये कम्युनिकेट करने के लिए मुझको हाथ धोना है. तो ये सिर्फ एक एक्टिविटी हम नहीं सिखा रहे हैं, हम उसको ये तरीका भी सिखा रहे हैं कि वो कैसे कम्युनिकेट कर सके. हम लोग कई बार इजी वे आउट लेते हैं, पर्टिकुलरली जो हमारे केयर गिवर्स हैं, वो ये कि हम बच्चों के लिए काम कर देते हैं, क्योंकि सिखाना बहुत कठिन है. तो ये एक्सेसिबिलिटी जो आएगा वो इस तरह से लाई जाएगी कि हम कैसे एक एक एक्टिविटी को छोटे छोटे भागों में तोड़ सकें, उसकी टास्क एनालिसिस कर सकें, सो दैट अ चाइल्ड विद आइदर विजुअल डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और मल्टीपल डिसेबिलिटी कैन लर्न दोज स्मॉलर स्टेप्स. सो दिस करिकुलम इज गोइंग टू कंसंट्रेट ऑन दोज स्किल सेट्स एंड टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम देयर.
1: इट ऑल कम्स फ्रॉम एम्पैथी आल्सो एट द सेम टाइम, बिकॉज़ आई एम एन आर्टिस्ट, आई हैव डन अ फिल्म लाइक अंधाधुन, आई वाज इन टच विद लॉट ऑफ ब्लाइंड स्टूडेंट्स. मैं मुंबई में वर्ली में ब्लाइंड स्कूल जाता था, उनको बस ऑब्जर्व करता था, उनको देखता था रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसे जी रहे हैं वो. इट्स नॉट दैट ईजी. अब मैं जैसे शूट कर रहा हूँ केरला में, मुझे रोज़ चोट लग रही है, अंगूठा यहाँ कट लगा हुआ है, यहाँ पे मेरे को एक कट लगा हुआ है, और मैं उनसे जब बात करता था, कहता हमें तो रोज़ चोट लगती रहती है. उनके लिए एक स्ट्रगल है, रोज़ कहीं से टकरा जाओ, चलना उनके लिए एक इशू है, किसी का सपोर्ट चाहिए. अब यहाँ पर हम हाइजीन को भी लेकर आ रहे हैं, इट्स नॉट दैट ईजी. हमने फर्स्ट हैंड देखा है, लेकिन नॉर्मल जनता ने, उनकी इंटरेक्शन नहीं होती ब्लाइंड स्टूडेंट से या ब्लाइंड किड्स के साथ. I think it comes from empathy. वहाँ तक हम अगर हम allies बन जाएं, उससे बड़ी बात नहीं हो सकती.

0: करने के लिए इस 12 दिन में अगर उसके कमरे में जो त्विशा यूज करती थी, उसकी अलमारी में, उसके पलंग के, उसके ब्रीफकेस में कहीं इस तरह की कोई सब्सटेंसेस रख भी दी जाती है, तो इस चीज पे लोगों को ध्यान देना चाहिए कि अब अगर इन्वेस्टिगेशन के समय ऐसी कोई चीज मिलती है तो गिरिबाला सिंह और इन लोग के पास 10-12 दिन का समय अभी तक तो है, आज भी वो उसी घर में रह रही है। तो ये बहुत बड़ी आज पुलिस रिमांड इनकी हुई है, लेकिन एक्चुअली उस घर को जिस दिन FIR हुई है कम से कम उस दिन लॉक कर दिया जाना चाहिए था।
1: दिन अभी मिले हैं प्रिपेयर करने के लिए फॉर द CBI टू इंटरवीन एज सून एज दे कैन, एंड ये जो हमें विंडो मिली है इसमें CBI को जल्द से जल्द टेकअप करना चाहिए, चार्ज लेना चाहिए इस केस का ताकि फेयर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो सके।
2: और CBI जो रिकमेंडेशन सरकार ने की, आपको लगता है कि जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जानी चाहिए?
1: जी बिल्कुल, वी आर होपफुल फॉर दैट।
2: और जो आपने आज कोर्टरूम में देखा, आपको लग रहा है कि कोई गिल्ट था समद के चेहरे पे?
1: नॉट एट ऑल, बॉडी लैंग्वेज का एक्सपर्ट नहीं हूं मैं, बट आई कैन मेक आउट कि जब आदमी खड़ा है उसको कैसा लग रहा है, तो देयर वाज नो रिमोर्स। एक होता है क्योंकि बीवी के जाने का, अगर किसी आपके करीबी के जाने का जो रिमोर्स होता है, दैट वाज कम्प्लीटली मिसिंग। इट वाज एविडेंट, वेरी एविडेंट फ्रॉम हिज बॉडी लैंग्वेज दैट ही इज वेरी रिलैक्स्ड, और वहां पे अपने वो दिखा रहे हैं, जानबूझ के हंसते हैं जो लोग, उनमें से एक।
3: Let me now tell you more about Samarth Singh, the man who's pretty much at the center of Tushar Sharma's case. Tushar Sharma's husband, he was absconding after the FIR was filed. Samarth Singh is the son of a retired High Court judge. And in fact, he's a lawyer. And let me now tell you the profile of Samarth Singh, because that's important. That is now likely to be scrutinized in greater detail. Of course, he studied law from Bangalore, and he was part of the exchange program at Belgium University, enrolled with Bar Council of Madhya Pradesh in 2018. He worked as an independent litigator and legal advisor, former legal advisor to Madhya Pradesh government. Remember, these are people with very influential links to the local administration and the government, something that Tushar Sharma's family had spoken about as well. And the case that actually changed everything with regard to Samarth Singh, he's been named in Tushar Sharma death case. The FIR includes dowry and harassment allegations, really. Samarth Singh's mother, Giribala Singh, has also been named in the FIR. And this case, viewers, has actually triggered massive outrage with calls now for fair and independent probe. Now, as far as from legal battle now to the police hunt, what all has happened? Well, he had his anticipatory bail plea that was rejected on the 18th of May. There was a 30,000 rupees reward that was announced by the police, and multiple police teams had actually launched search operation because Samarth Singh had suddenly gone missing when his name had appeared in the FIR. In fact, family demanded a second autopsy because of the fact that they felt that the first autopsy was done, and there were a lot of discrepancies in that report. And now Samarth Singh is a man who is now in police remand for 7 long days. And one important update that needs to be told also is that Samarth Singh has lost his license to practice law because he's now been suspended from the Bar Council of India. Now, while Samarth Singh has surrendered to the police, it's his mother, Giribala Singh, that has been brought to the dock by the Madhya Pradesh government. Yesterday, the government moved court against Giribala's anticipatory bail, alleging that it was granted in haste. The Madhya Pradesh government further argued that there are serious concerns of evidence tampering and obstruction with regard to the probe. Giribala Singh, however, has refused to take NDTV's questions. And in fact, after Samarth's manhunt, the focus in Tushar Sharma's case now shift back to Giribala Singh, and with the next court hearing now scheduled for the 25th of May. Now, all eyes now on the role, or possible role, if any, of Giribala Singh, given the fact that many feel that things are not adding up in the sequence of events.
4: भोपाल में गिरिबाला सिंह के घर पर वकीलों की टीम पहुंची है, क्योंकि आज समर्थ की कोर्ट में पेशी होनी है, और इसके ठीक पहले जो वकीलों की पूरी टीम है वो गिरिबाला सिंह जो पूर्व जज है उनके घर के अंदर जाती हुई दिख रही है। हालांकि उनका केस गिरिबाला सिंह खुद लड़ेंगी या वकील लड़ेंगे, इस बात को लेकर वकीलों में कोई बातचीत नहीं की है। ये समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह का घर है, और अभी क्योंकि कल भी गिरिबाला सिंह लगातार जो वकीलों से सलाह है वो ले रही थी, और आज भी वकीलों की टीम पहुंची है जिससे वो लीगल एडवाइस लेंगी और इस बात पर सलाह मशवरा की जाएगी कि 25 तारीख क्योंकि उनको नोटिस भी दिया गया है कोर्ट के समक्ष पेश होना, जो पुलिस से जांच में सहायता नहीं कर रही है। इसके साथ ही समर्थ के बेल को लेकर भी तमाम जो बातें हैं वो जानकारियाँ जुटानी है, चर्चा करनी है, क्योंकि वो खुद भी एक जज रही हैं तो बहुत सारी कानूनी जानकारी उनके पास भी। अब देखना होगा कि जो गिरिबाला की अग्रिम जमानत याचिका है उस पर आगे क्या कुछ फैसला होता है।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्द्र मसाला।
5: नवनिधि शर्मा द फादर ऑफ त्विशा जॉइंस मी वन ऑन वन फॉर द फर्स्ट टाइम।
6: शुरू में ही देखने को मिल गया था कि क्रिमिनल माइंडसेट है। भेड़िया ने बकरी की खाल में शिकार किया है सर, दे आर कैमेलियन पीपल।
7: अ ब्रदर मेजर हर्षित स्पीक्स आउट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन नेशनल टेलीविजन।
8: वी हैव बीन फाइटिंग नॉनस्टॉप। You're not stopping until the justice is served.
9: Missing, where is your son? Let me ask you that pointed question.
10: He is ready to face all the questions, but he has to exhaust his legal remedies.
11: Breaking news coming in. Samarth Singh has finally surrendered. These are fresh visuals coming on your
12: screen. Number.
11: First on NDTV. NDTV is the only network in the country that is relentlessly chasing this case.
7: Joining us live now for the first time is Brigendra Singh, senior advocate, appearing for Samarth Singh.
13: The girl has gone because of the pressure created by her own parents.
7: These are difficult circumstances, but the hard questions still need to be asked.
14: आपने तो दीदी को एकदम धो डाला।
15: इसमें जनता का जीत है, मोदी जी का जीत है।
16: आज के की खावे झालमुड़ी ना माचर झोल।
14: How will you celebrate?
15: झालमुड़ी माचर झोल विद रसगुल्ला।
17: You know, you remember, you promised me that you will come to Kabini and do an interview with me. You like going to the forest?

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे
1: अक्रॉस द कंट्री ही हैज ट्रैक्ड द पल्स ऑफ पावर फ्रॉम वॉशिंगटन टू कोरिया witnessed history being made in global capitals and conflict zones, brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network.

0: India's unshakable news habit. NDTV.com is India's number one English news website.
1: बदलता नहीं अब बढ़ता पंजाब, नवे पंजाब का नवा स्वैग लेकर आ रहा है एनडीटीवी नवा पंजाब समिट। शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरियां, विकास की हकीकत और नवा पंजाब के मिशन पर मंच साझा करेंगे सरकार के दिग्गज और पंजाबी कलाकार। देखिए मान मैजिक माननीय मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के साथ सिर्फ एनडीटीवी पर।

0: चीज़ें वही रिपीट करना है, बार बार वही रिवीजन करना है, वही रिवीजन करना है, बहुत फ्रस्ट्रेशन सा होता है, ऐसा लगता है सब कुछ किसी काम का नहीं है। कई बार तो ऐसा मन करता है कि सुसाइड कर ले।
1: Basically, we need to observe the behavior. So, in the behavior, the person's interpersonal connection would be affected. The person would be more irritable. The person may be more withdrawn, or sometimes the person may act out, be more aggressive towards persons whom they would have, behaved properly. They might involve in activities which give them immediate pleasure. For example, getting hooked to social media, sleeping for long hours, or not sleeping at all. You know, when it comes to the food habits, the nutrition might go for a toss. You know, they might eat a lot of carbs. You know, proper nutrition might not be there. Might not go out. You know, physical involvement, physical activities might not be there. So these are some of the areas, and these are some of the behaviors if we notice in a person, then we should be careful about the emotional burnout.
2: Every day Madhu spends around 30 rupees traveling from Anand Nagar to her coaching classes in MP Nagar. Her family somehow manages to send 2,000 rupees for the rent. Her father took loans for her education. Her mother mortgaged her jewelry.
3: जिस दिन नीट एग्जाम कैंसिल होने की न्यूज आई थी, तो उस दिन क्या हुआ था कि मैं छुट्टी पे थी, घर पे थी, तो मेरे पास एकदम से बच्चों के कॉल आना शुरू हो गए। मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया, और उस टाइम तक हमने न्यूज भी नहीं देखी थी। बच्चे ऐसे थे जो लिटरली रो रहे थे फोन पे, तो मैंने पूछा क्या हो गया, और वो बच्चे ऐसे थे जो अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से नहीं थे, दूसरे स्टेट से आए हुए थे, वेस्ट बंगाल से आए थे, मणिपुर से आए थे, वो यहाँ पीजी लेके रहते थे, और उनकी कंडीशन ये थी कि उनकी मम्मी ने जो उनकी ज्वेलरी होती है वो उसे गिरवी पे रख के यहाँ की उन्होंने फीस भरी।
2: Lakshya's father is a farmer and he grew up in a village near Jaipur. After he scored well in the class 12 exams, Lakshya's father decided that his son should become a doctor. So Lakshya went to Sikar and joined a coaching center there to prepare for NEET UG. He appeared for the exam in 2026, but when days later the exam got cancelled, it was emotionally hard to accept for Lakshya. In his family, someone had already suffered. In 2015, his uncle had attempted NEET UG, but then too, his was the center where the exam got cancelled, and he never became a doctor.
4: कहीं ना कहीं जो ये चीज़ें हो रही हैं ना, उससे डिसअपॉइंटेड तो है ही ना, कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का फेलियर है। पेपर को एक एजेंसी को बहुत एजुकेशन ही नहीं है, तो हमारा हम क्या कर लेंगे।
5: एक बार एक साल पूरी तैयारी की, फिर उसने एग्जाम लिखा, फिर आया पेपर लीक हो गया। तो बच्चे की तो मेहनत है ही है, पेरेंट्स को फिर उसका मनोबल बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि बच्चा तो टूटता ही टूटता है, साथ में माँ बाप की भी जो आशाएं थी वो भी टूट जाती है। सबकी जेब पर भी फर्क पड़ता है, बच्चों पर भी फर्क पड़ता है, और घर की स्थिति सर मिडिल क्लास लोगों पर तो बहुत इफेक्ट पड़ता है।
2: Earlier, Arnav was preparing while staying in a hostel, but now he has returned home. He has no other option but to start preparing again. But Arnav remains worried about what the paper will be like this time. His mother too is fearful about the uncertainty and confusion that Arnav is undergoing as he continues with his preparations.
6: गार्जियन का प्रेशर नहीं डालते हैं, गार्जियन एक्सेसिव फेथ करते हैं कि नहीं ये बच्चा अच्छा है करने में, इसका तो हो ही जाएगा। तो वो जो एक फेथ होता है ना, कई बार बच्चा उसको बर्डन के रूप में ले लेता है, थोड़ा बहुत वो भी थोड़ा फील होता है कि नहीं मैं नहीं कर पाया तो सबका एक्सपेक्टेशन है मुझ पर, मुझे जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, मेरे गार्जियन जो मुझे बचपन से यहाँ लाए मुझे पढ़ाए, मेरे सर मेरे भैया जो भी सारे टीचर लोग हैं मेरे, मैं सबका एक्सपेक्टेशन को मीट करना थोड़ा एक चैलेंज रहता है कि नहीं मेरे को ऐसा करना है, ताकि मैं उन लोगों से भी कह सकूँ कि सर आपने मुझे पढ़ाया तो मैंने आपके लिए रिजल्ट दिया, मैंने किया, तो थोड़ा प्रेशर रहता है। बट ये फेथ भी अच्छा लगता है कि चलो सामने वाले आदमी को फेथ है मेरे पे कि मैं कर सकता
3: हूँ। बच्चे बड़े परेशान हैं कि पता नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं, कुछ तो ऐसे हैं कि रोने लगते हैं डायरेक्टली कि अब मैम नहीं होगा हमसे, उनको संभालना बड़ा मुश्किल होता है कि अब क्यों नहीं होगा, होगा तुमसे होगा, लेकिन कुछ देर के लिए हम उन्हें मोटिवेट कर देते हैं, लेकिन वो मोटिवेशन होता है टेम्परेरी, अगले दिन उनका फिर वही हाल हो जाता है, फिर उनको समझाना पड़ता है।
2: Harish is from Sikar and this was his fifth NEET attempt. Harish says that if someone truly wants to become a doctor, then the number of attempts don't matter.
7: अगर मुझे डॉक्टर बनना ही है तो वो चार अटेम्प्ट पांच अटेम्प्ट मायने नहीं रखते आपके लिए, लेकिन जो अपने दोस्त जा चुके हैं मेडिकल कॉलेज में उनसे भी अपने को मोटिवेशन मिलता है, लेकिन मन में रहता है कि यार मेरा दोस्त जा चुका है मुझे भी जाना ही है। तो अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप अपने आप को मोटिवेट फील करोगे ही करोगे, ऐसा कुछ नहीं है कि रीनीट हो रहा है मैं डिप्रेस हो जाऊंगा, ऐसा कुछ भी।
6: जो रीनीट के पेपर होते हैं वो एक्सेसिवली ज़्यादा टफ होते हैं, क्वेश्चन की वाशनेस बढ़ जाएगी, तो वो जिस डेप्थ तक पढ़ा था उसको उसका वाशनेस बढ़ाना पड़ जाएगा। तो एक प्रेशर तो ये है कि जितना हम पढ़े उतना रिवाइज करना है, और प्लस कुछ एडिशनल चीज़ें पढ़ने वाला, तो वो बच्चा पढ़ने वाला हो नहीं पढ़ने वाला हो, जिस भी तरह का स्टूडेंट हो, एवरेज हो टॉपर हो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, उसको दोबारा और मेहनत करना ही पड़ जाएगा उस पर, और ये एक प्रेशर फील होता है।
2: The NEET examination introduced by the Medical Council of India was first conducted in May 2013 and it replaced several medical examinations that had been there across the country. That first time, more than 10 lakh students had registered to take the exam. But not everyone was happy and cases were filed in the courts. In July 2013, the Supreme Court of India put a stay on the exam in response to petitions received against the exam and said that the medical council could not interfere in the admission process. NEET made a comeback in 2016 and by 2020 NEET had become the one and only entrance exam for medical colleges across the country. Alia Fatima scored 99% in her board examinations and she had planned to prepare for NEET UG 2027 with the dream of becoming a doctor. But she is no longer sure she wants to become one because of what happened in 2026. When the examination got cancelled, she began feeling mentally disturbed and uncertain about whether future efforts would be rewarded fairly.
8: Becoming a doctor had been my goal and aim and aspiration from class 5, and it was really very shocking to hear that, and because of that I took biology in my class 11th and 12th, so it affected me much. But seeing owing to the circumstances I had to take the tough decision of, you know, leaving this particular stream of biology and NEET UG and going into the career of law, where I feel that I would definitely be doing my best.

अनफॉर्चुनेटली जो रिज़ल्ट आया नीट का और जो उसके साथ इतना बड़ा केस हो गया है पेपर लीक का, तो उससे पूरी फैमिली हम लोग बहुत शॉक्ड हैं। और अब कुछ समझ में नहीं आता कि आगे ये कोशिश करें एक साल तक के पूरी तरह से पूरी तैयारी करें और फिर उसके बाद अगली बार पता नहीं क्या हो। तो ये डर सबके दिमाग में बैठ गया, तो डर के मारे इन्हीं ने कहा

0: NEET till 2018 was conducted by the Central Board of Secondary Education, CBSE. But the responsibility was transferred to the National Testing Agency. NTA conducted the first NEET UG examination in 2019. NEET UG exam is conducted in 9 different languages other than English and Hindi: Assamese, Bengali, Gujarati, Kannada, Marathi, Odia, Tamil, Telugu, and Urdu. While most major entrance exams in India take the computer-based route, NEET remained with the optical mark recognition or OMR technology that reads and captures data from paper forms. Even in the NTA basket of 16 national level examinations, NEET is the only one which remained in the OMR format.
1: If we look at 2020 to 2026, now there have been 2-3 times paper already leaked. So NTA should be focused on this thing, that if paper leak is leaking, then somewhere it is. तभी उन्होंने उस चीज़ पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और एंड में बोला कि हमें पता चलते हमने रिपोर्ट कर दिया. उनके रिपोर्ट करने से कुछ फ़ायदा थोड़ा हो रहा है, हमें तो वही करना पड़ रहा है. और जैसे कि पेपर के बाद हम तो फ्री माइंड बैठ गए, 20 दिन ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हम लोग अच्छे से थे कि हमारा तो हो जाएगा. पर वो 20 दिन का जो लॉस हुआ, हमने किताबों पर ध्यान नहीं दिया, उसको भी तो सर रिकवर नहीं कर सकते ना. और प्लस फिर वही है कि पेपर भी कैसे भी आ सकता है.
0: Inside Madhu's tiny room in Bhopal, the doctor poster on the wall every day reminds her of her goal in life. Whatever be the obstacle, Madhu still has to struggle on, because in the harshness of life, dreams spur hope for the future.
2: नीट एस्पिरेंट के मुझे लगता है कि उन्होंने जो ये नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, वो अपने लिए एक जो एवरेज फैमिली से बिलोंग करते हैं, बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा ये मौका होता है कि हाँ अपन नीट के एग्ज़ाम दे, डॉक्टर बने. लेकिन ये जो समाज के लोग हैं, इन्होंने ही इस एग्ज़ाम को मतलब कि तहस नहस कर रखा है, पेपर लीक करवाते हैं. उनको मतलब क्या है इस चीज़? आप अच्छा मतलब कि ऐसा तो है नहीं कि आप कैसा करने से जो है अब कुछ नहीं होगा, आपको पैसे मिलेंगे और कुछ नहीं है उससे. लेकिन उससे जो अच्छे बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो जिनका माइंडसेट अच्छा होता है, जिनके लिए डॉक्टर लोगों के लिए सिंपैथी होती है, वो लोग पीछे हट जाते हैं इस रास्ते से. तो ये गलत बात है कि आप पेपर लीक करवाते हो जो भी है ये.
0: Days after the NEET UG 2026 examination was cancelled, NTA announced a new examination date. While NEET will be computer-based from 2027, as promised by the Education Minister, NTA clarified that the repeat exam of 2026 will still be pen and paper. The re-exam on June 21st is expected under heightened security and monitoring measures.
3: अभी आपको मतलब दोबारा से वो चीज़ रिवाइज करनी पड़ेगी, आपको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे दोबारा, आपको देखना पड़ेगा पेपर का लेवल, देखना पड़ेगा उस हिसाब से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी. मतलब रीनीट अगर ये दे रहे हैं लोग, काफ़ी ज़्यादा बच्चे दे रहे हैं, हाँ टाइम थोड़ा कम है.
4: मेरा नाम है लक्ष्य, और मेरा नाम के अंदर ही मेरा लक्ष्य छुपा है.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी। मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
2: When others are warming up, I'm raring to go.

0: remand for 7 days after he was brought to Bhopal from Jabalpur earlier today. Samarth Singh's police remand came a day after he made a dramatic appearance at the Jabalpur court to surrender, triggering chaos and confusion in the courtroom. Now, police are investigating several key angles in the case, with Samarth now in custody. The probe is now focusing on major discrepancies in the cause of death, the possible role of the family members, the rooftop access, and the exact sequence of events leading to the incident. In the latest, NDTV has accessed exclusive images of the terrace where Tusha's body was found hanging in her in-law's home. Here are some reactions coming in after Samarth Singh was sent to 7 days of police remand. Listen in.
1: As you can see right now, Samarth has been produced, and now police have been getting the 7-day remand of the Samarth, and now he has been brought back by the police, and now he would be taking back to for the interrogations. And right now I can show you how the Samarth, I mean, we'll be trying to talk to Samarth where he had been for last 10 days, where he is Samarth, and questioning him for where he was for past 10 days when he came back to Jabalpur. We will try to contact him where he has been, where he was with Samarth. You can see Samarth, he is wearing scarf and every single thing, so that no interaction can be done. Samarth! So as you can see, Samarth has been brought by the...
2: पुलिस रिमांड मिली. अब ये एक्चुअली तो देखिए बहुत लेट हो गया है. 10 दिन आप रहे हैं और इस केस में दुर्भाग्य से ये हुआ है कि गिरीबाला सिंह को जमानत अग्रिम जमानत मिलने के समय ऐसी कंडीशन नहीं लगाई गई कि वो उस घर में नहीं रह सकती. तो वो शुरू से उस घर को एंजॉय कर रही हैं. अब वहाँ पे उनके खिलाफ, समर्थ के खिलाफ जो भी एविडेंस है, साक्ष्य हो सकते हैं, उन्हें नष्ट करने की उन्हें पूरी अपॉर्चुनिटी थी. और त्विशा के अगेंस्ट कोई भी, जैसे बार बार सोशल मीडिया पे वो एलिगेशन लगा दी है कि त्विशा ड्रग्स लेती थी, तो इस चीज़ को साबित करने के लिए इस 12 दिन में अगर उसके कमरे में जो त्विशा यूज़ करती थी, उसकी अलमारी में, उसके पलंग के, उसके ब्रीफकेस में कहीं इस तरह की कोई सब्सटेंसेस रख भी दी जाती है, तो इस चीज़ पे लोगों को ध्यान देना चाहिए कि अब अगर इन्वेस्टिगेशन के समय ऐसी कोई चीज़ मिलती है तो गिरीबाला सिंह और इन लोग के पास 10-12 समय दिन का समय अभी तक तो है. आज भी वो उसी घर में रह रही हैं. तो ये बहुत बड़ी आज पुलिस रिमांड इनकी हुई है, लेकिन एक्चुअली उस घर को जिस दिन FIR हुई है कम से कम उस दिन लॉक कर दिया जाना चाहिए था.
3: 7 दिन अभी मिले हैं प्रिपेयर करने के लिए फॉर द CBI टू इंटरवीन एज सून एज दे कैन. एंड ये जो हमें विंडो मिली है इसमें CBI को जल्द से जल्द टेकअप करना चाहिए, चार्ज लेना चाहिए इस केस का, ताकि फेयर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो सके.
4: और CBI जो रिकमेंडेशन सरकार ने की, आपको लगता है कि जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जानी चाहिए?
3: जी बिल्कुल, वी आर होपफुल फॉर दैट.
4: और जो आपने आज कोर्टरूम में देखा, आपको लग रहा है कि कोई गिल्ट था समर्थ के चेहरे पे?
3: नॉट एट ऑल. बॉडी लैंग्वेज का एक्सपर्ट नहीं हूं मैं, बट आई कैन मेक आउट कि जब आदमी खड़ा है उसको कैसा लग रहा है. तो देयर वाज नो रिमोर्स. एक होता है कि उनकी बीवी के जाने का, अगर किसी आपके करीबी के जाने का जो रिमोर्स होता है, दैट वाज कम्प्लीटली मिसिंग. इट वाज एविडेंट, वेरी एविडेंट फ्रॉम हिज बॉडी लैंग्वेज दैट ही इज वेरी रिलैक्स्ड. और वहां पे अपने वो दिखा रहे हैं, जानबूझ के हंसते हैं जो लोग, उनमें से एक.
0: And while Samarth Singh has surrendered to the police, it is his mother, Giribala Singh, that has been brought to the dock by the Madhya Pradesh government. Yesterday, the government moved court against Giribala's anticipatory bail, alleging that it was granted in haste. The Madhya Pradesh government further argued that there are serious concerns of evidence tampering and obstruction of the investigation. While Giribala Singh refused to take NDTV's question, the question main is, after Samarth's manhunt, the focus is now shifting to Giribala, the mother-in-law of Twisha Sharma, with the next court hearing on May 25th. Here is a report that's been filed by my colleague Akash from outside Giribala's residence in Bhopal. Take a look.
5: भोपाल में गिरिबाला सिंह के घर पर वकीलों की टीम पहुंची है, क्योंकि आज समर्थ की कोर्ट में पेशी होनी है. और इसके ठीक पहले जो वकीलों की पूरी टीम है, वो गिरिबाला सिंह जो पूर्व जज है उनके घर के अंदर जाती हुई दिख रही है. हालांकि उनका केस गिरिबाला सिंह खुद लड़ेंगी या वकील लड़ेंगे, इस बात को लेकर वकीलों में कोई बातचीत नहीं की है. ये समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह का घर है. और अभी, क्योंकि कल भी गिरिबाला सिंह लगातार जो वकीलों से सलाह है वो ले रही थी, और आज भी वकीलों की टीम पहुंची है जिससे वो लीगल एडवाइस लेंगी और इस बात पर सलाह मशवरा की जाएगी कि 25 तारीख, क्योंकि उनको नोटिस भी दिया गया है कोर्ट के समक्ष पेश होना, जो पुलिस से जांच में सहायता नहीं कर रही है. इसके साथ ही समर्थ के बेल को लेकर भी तमाम जो बातें हैं वो जानकारियाँ जुटानी है, चर्चा करनी है, क्योंकि वो खुद भी एक जज रही हैं, तो बहुत सारी कानूनी जानकारी उनके पास भी. अब देखना होगा कि जो

0: help access and the exact sequence of events leading to the incident. In the latest, NDTV has accessed exclusive images of the terrace where Tusha's body was found hanging in her in-law's home. Here are some reactions coming in after Samar Singh was sent to 7 days of police remand. Listen in.
1: As you can see right now, Samar has been produced and now police have been getting the 7 day remand of the Samar, and now he is he has been brought back by the police and now he would be taking back to for the interrogations. And right now I can show you how the Samar, I mean, we'll be trying to talk to Samar where he had been for last 10 days, where he is Samar, and questioning him for where he was for past 10 days when he came back to Jabalpur. We will try to contact him where he has been, where he was with Samar. You can see Samar, he is wearing scarf and every single thing so that no interaction can be done. Samar. So as you can see, Samar has been brought by the...
2: पुलिस रिमांड मिली. अब ये एक्चुअली तो देखिए बहुत लेट हो गया है. 10 दिन आप रहे हैं और इस केस में दुर्भाग्य से ये हुआ है कि गिरीबाला सिंह को जमानत, अग्रिम जमानत मिलने के समय ऐसी कंडीशन नहीं लगाई गई कि वो उस घर में नहीं रह सकती. तो वो शुरू से उस घर को एंजॉय कर रही हैं. अब वहाँ पे उनके खिलाफ, समर्थ के खिलाफ जो भी एविडेंसेस, साक्ष्य हो सकते हैं, उन्हें नष्ट करने की उन्हें पूरी अपॉर्चुनिटी थी. और त्विशा के अगेंस्ट कोई भी, जैसे बार बार सोशल मीडिया पे वो एलिगेशन लगा दिए हैं कि त्विशा ड्रग्स लेती थी, तो इस चीज़ को साबित करने के लिए इस 12 दिन में अगर उसके कमरे में जो त्विशा यूज़ करती थी, उसकी अलमारी में, उसके पलंग के, उसके ब्रीफकेस में कहीं इस तरह की कोई सब्सटेंसेस रख भी दी जाती है, तो इस चीज़ पे लोगों को ध्यान देना चाहिए कि अब अगर इन्वेस्टिगेशन के समय ऐसी कोई चीज़ मिलती है तो गिरीबाला सिंह और इन लोग के पास 10-12 समय दिन का समय अभी तक तो है. आज भी वो उसी घर में रह रही हैं. तो ये बहुत बड़ी आज पुलिस रिमांड इनकी हुई है, लेकिन एक्चुअली उस घर को जिस दिन FIR हुई है कम से कम उस दिन लॉक कर दिया जाना चाहिए था.
3: दिन हमें मिले हैं प्रिपेयर करने के लिए फॉर द CBI टू इंटरवीन एज सून एज दे कैन. एंड ये जो हमें विंडो मिली है इसमें CBI को जल्द से जल्द टेकअप करना चाहिए, चार्ज लेना चाहिए इस केस का, ताकि फेयर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो सके.
4: और CBI जो रिकमेंडेशन सरकार ने की, आपको लगता है कि जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जानी चाहिए?
3: जी बिल्कुल, वी आर होपफुल फॉर दैट.
4: और जो आपने आज कोर्टरूम में देखा, आपको लग रहा है कि कोई गिल्ट था समर्थ के चेहरे पे?
3: नॉट एट ऑल. बॉडी लैंग्वेज का एक्सपर्ट नहीं हूं मैं, बट आई कैन मेक आउट कि जब आदमी खड़ा है उसको कैसा लग रहा है. तो देयर वाज नो रिमोर्स. एक होता है कि उनकी बीवी के जाने का, अगर किसी आपके करीबी के जाने का जो रिमोर्स होता है, दैट वाज कम्प्लीटली मिसिंग. इट वॉज एविडेंट, वेरी एविडेंट फ्रॉम हिज बॉडी लैंग्वेज दैट इज वेरी रिलैक्स्ड. और वहां पे अपने वो दिखा रहे हैं, जानबूझ के हंसते हैं जो लोग, उनमें से एक.
0: And while Samar Singh has surrendered to the police, it is his mother, Giribala Singh, that has been brought to the dock by the Madhya Pradesh government. Yesterday, the government moved court against Giribala's anticipatory bail, alleging that it was granted in haste. The Madhya Pradesh government further argued that there are serious concerns of evidence tampering and obstruction of the investigation. While Giribala Singh refused to take NDTV's question, the question main is, after Samar's manhunt, the focus is now shifting to Giribala, the mother-in-law of Tusha Sharma, with the next court hearing on May 25th. Here is a report that's been filed by my colleague Akash from outside Giribala's residence in Bhopal. Take a look.
5: भोपाल में गिरिबाला सिंह के घर पर वकीलों की टीम पहुंची है, क्योंकि आज समर्थ की कोर्ट में पेशी होनी है. और इसके ठीक पहले जो वकीलों की पूरी टीम है, वो गिरिबाला सिंह जो पूर्व जज है उनके घर के अंदर जाती हुई दिख रही है. हालांकि उनका केस गिरिबाला सिंह खुद लड़ेंगी या वकील लड़ेंगे, इस बात को लेकर वकीलों में कोई बातचीत नहीं की है. ये समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह का घर है. और अभी, क्योंकि कल भी गिरिबाला सिंह लगातार जो वकीलों से सलाह है वो ले रही थी, और आज भी वकीलों की टीम पहुंची है जिससे वो लीगल एडवाइस लेंगी और इस बात पर सलाह मशवरा की जाएगी कि 25 तारीख, क्योंकि उनको नोटिस भी दिया गया है कोर्ट के समक्ष पेश होना, जो पुलिस से जांच में सहायता नहीं कर रही है. इसके साथ ही समर्थ के बेल को लेकर भी तमाम जो बातें हैं वो जानकारियाँ जुटानी है, चर्चा करनी है, क्योंकि वो खुद भी एक जज रही हैं तो बहुत सारी कानूनी जानकारियाँ उनके पास भी. अब देखना होगा कि जो गिरिबाला की अग्रिम जमानत याचिका है उस पर आगे क्या कुछ फैसला होता है.

0: without any proper grounds being recorded in the trial court order. So there are several discrepancies that have been pointed out by the family of Twisha, and this exactly has fallen to the notice of the Supreme Court, and that's why this bench headed by Chief Justice of India Surya Kant has taken the suo motu cognizance, right, and now it will be hearing on Monday.
1: Absolutely. Thank you very much, Rupur. All eyes now stay on the crucial Supreme Court hearing that will be taking place on Monday, that is 25th of May. Thank you very much, Rupur, for getting us those details. Now, 11 days after Twisha Sharma's death, absconding accused in the case, Twisha's husband is finally behind bars. Bhopal court has sent Samarth Singh to police remand for 7 days after he was brought to Bhopal from Jabalpur earlier today. Samarth Singh's police remand came a day after he made a dramatic appearance at the Jabalpur court to surrender, triggering chaos and confusion in the courtroom. Now, police are investigating several key angles in the case, with Samarth now in custody. The probe is now focusing on major discrepancies in the cause of death, the possible role of the family members, the rooftop access, and the exact sequence of events leading to the incident. In the latest, NDTV has accessed exclusive images of the terrace where Twisha's body was found hanging in her in-law's home. Here are some reactions coming in after Samarth Singh was sent to 7 days of police remand. Listen in.
2: As you can see right now, Samarth has been produced, and now police have been getting the 7-day remand of the Samarth, and now he has been brought back by the police, and now he would be taking back for the interrogations. And right now I can show you how the Samarth, I mean, we'll be trying to talk to Samarth where he had been for last 10 days, where he is Samarth, and questioning him for where he was for past 10 days when he came back to Jabalpur. We will try to contact him where he has been, where he was with Samarth. You can see Samarth, he is wearing scarf and every single thing, so that no interaction can be done. Samarth! So as you can see, Samarth has been brought by the...
3: पुलिस रिमांड मिली. अब ये एक्चुअली तो देखिए बहुत लेट हो गया है. 10 दिन आप रहे हैं और इस केस में दुर्भाग्य से ये हुआ है कि गिरीबाला सिंह को जमानत, अग्रिम जमानत मिलने के समय ऐसी कंडीशन नहीं लगाई गई कि वो उस घर में नहीं रह सकती. तो वो शुरू से उस घर को एंजॉय कर रही हैं. अब वहाँ पे उनके खिलाफ, समर्थ के खिलाफ जो भी एविडेंसेस साक्ष्य हो सकते हैं उन्हें नष्ट करने की उन्हें पूरी अपॉर्चुनिटी थी. और त्विशा के अगेंस्ट कोई भी, जैसे बार बार सोशल मीडिया पे वो एलिगेशन लगा दी है कि त्विशा ड्रग्स लेती थी, तो इस चीज़ को साबित करने के लिए इस 12 दिन में अगर उसके कमरे में जो त्विशा यूज़ करती थी, उसकी अलमारी में, उसके पलंग के, उसके ब्रीफकेस में कहीं इस तरह की कोई सब्सटेंसेस रख भी दी जाती है, तो इस चीज़ पे लोगों को ध्यान देना चाहिए कि अब अगर इन्वेस्टिगेशन के समय ऐसी कोई चीज़ मिलती है तो गिरीबाला सिंह और इन लोग के पास 10-12 समय दिन का समय अभी तक तो है. आज भी वो उसी घर में रह रही हैं. तो ये बहुत बड़ी आज पुलिस रिमांड इनकी हुई है, लेकिन एक्चुअली उस घर को जिस दिन FIR हुई है कम से कम उस दिन लॉक कर दिया जाना चाहिए था.
4: दिन अभी मिले हैं प्रिपेयर करने के लिए फॉर द CBI टू इंटरवीन एज सून एज दे कैन. एंड ये जो हमें विंडो मिली है इसमें CBI को जल्द से जल्द टेकअप करना चाहिए, चार्ज लेना चाहिए इस केस का, ताकि फेयर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो सके.
5: और CBI जो रिकमेंडेशन सरकार ने की, आपको लगता है कि जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जानी चाहिए?
4: जी बिल्कुल, वी आर होपफुल फॉर दैट.
5: और जो आपने आज कोर्टरूम में देखा, आपको लग रहा है कि कोई गिल्ट था समर्थ के चेहरे पे?
4: नॉट एट ऑल. बॉडी लैंग्वेज का एक्सपर्ट नहीं हूं मैं, बट आई कैन मेक आउट कि जब आदमी खड़ा है उसको कैसा लग रहा है. तो देयर वाज नो रिमोर्स. एक होता है क्योंकि बीवी के जाने का, अगर किसी आपके करीबी के जाने का जो रिमोर्स होता है, दैट वाज कंप्लीटली मिसिंग. इट वाज एविडेंट, वेरी एविडेंट फ्रॉम हिज बॉडी लैंग्वेज दैट ही इज वेरी रिलैक्स्ड. और वहां पे अपने वो दिखा रहे हैं, जानबूझ के हंसते हैं जो लोग, उनमें से एक.
1: And while Samarth Singh has surrendered to the police, it is his mother, Giribala Singh, that has been brought to the dock by the Madhya Pradesh government. Yesterday, the government moved court against Giribala's anticipatory bail, alleging that it was granted in haste. The Madhya Pradesh government further argued that there are serious concerns of evidence tampering and obstruction of the investigation. While Giribala Singh refused to take NDTV's question, the question main is, after Samarth's manhunt, the focus is now shifting to Giribala, the mother-in-law of Twisha Sharma, with the next court hearing on May 25th. Here is a report that's been filed by my colleague Akash from outside Giribala's residence in Bhopal. Take a look.
6: भोपाल में गिरिबाला सिंह के घर पर वकीलों की टीम पहुंची है, क्योंकि आज समर्थ की कोर्ट में

0: Absolutely. Thank you very much, Rupur. All eyes now stay on the crucial Supreme Court hearing that will be taking place on Monday, that is 25th of May. Thank you very much, Rupur, for getting us those details. Now, 11 days after Trisha Sharma's death, absconding accused in the case, Trisha's husband is finally behind bars. Bhopal court has sent Samarth Singh to police remand for 7 days after he was brought to Bhopal from Jabalpur earlier today. Samarth Singh's police remand came a day after he made a dramatic appearance at the Jabalpur court to surrender, triggering chaos and confusion in the courtroom. Now, police are investigating several key angles in the case, with Samarth now in custody. The probe is now focusing on major discrepancies in the cause of death, the possible role of the family members, the rooftop access, and the exact sequence of events leading to the incident. In the latest, NDTV has accessed exclusive images of the terrace where Trisha's body was found hanging in her in-law's home. Here are some reactions coming in after Samarth Singh was sent to 7 days of police remand. Listen in.
1: As you can see right now, Samarth has been produced, and now police have been getting the 7-day remand of the Samarth, and now he has been brought back by the police, and now he would be taking back for the interrogations. And right now I can show you how the Samarth, I mean, we'll be trying to talk to Samarth where he had been for last 10 days, where he is Samarth, and questioning him for where he was for past 10 days when he came back to Jabalpur. We will try to contact him where he has been, where he was with Samarth. You can see Samarth, he is wearing scarf and every single thing, so that no interaction can be done. Samarth! So as you can see, Samarth has been brought by the...
2: पुलिस रिमांड मिली. अब ये एक्चुअली तो देखिए बहुत लेट हो गया है. 10 दिन आप रहे हैं और इस केस में दुर्भाग्य से ये हुआ है कि गिरीबाला सिंह को जमानत, अग्रिम जमानत मिलने के समय ऐसी कंडीशन नहीं लगाई गई कि वो उस घर में नहीं रह सकती. तो वो शुरू से उस घर को एंजॉय कर रही हैं. अब वहाँ पे उनके खिलाफ, समर्थ के खिलाफ जो भी एविडेंसेस साक्ष्य हो सकते हैं उन्हें नष्ट करने की उन्हें पूरी अपॉर्चुनिटी थी. और त्रिशा के अगेंस्ट कोई भी, जैसे बार बार सोशल मीडिया पे वो एलिगेशन लगा दी है कि त्रिशा ड्रग्स लेती थी, तो इस चीज़ को साबित करने के लिए इस 12 दिन में अगर उसके कमरे में जो त्रिशा यूज़ करती थी, उसकी अलमारी में, उसके पलंग के, उसके ब्रीफकेस में कहीं इस तरह की कोई सब्सटेंसेस रख भी दी जाती है, तो इस चीज़ पे लोगों को ध्यान देना चाहिए कि अब अगर इन्वेस्टिगेशन के समय ऐसी कोई चीज़ मिलती है तो गिरीबाला सिंह और इन लोग के पास 10-12 दिन का समय अभी तक तो है. आज भी वो उसी घर में रह रही हैं. तो ये बहुत बड़ी आज पुलिस रिमांड इनकी हुई है, लेकिन एक्चुअली उस घर को जिस दिन FIR हुई है कम से कम उस दिन लॉक कर दिया जाना चाहिए था.
3: दिन अभी मिले हैं प्रिपेयर करने के लिए फॉर द CBI टू इंटरवीन एज सून एज दे कैन. एंड ये जो हमें विंडो मिली है इसमें CBI को जल्द से जल्द टेकअप करना चाहिए, चार्ज लेना चाहिए इस केस का, ताकि फेयर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो सके.
4: और CBI जो रिकमेंडेशन सरकार ने की, आपको लगता है कि जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जानी चाहिए?
3: जी बिल्कुल, वी आर होपफुल फॉर दैट.
4: और जो आपने आज कोर्टरूम में देखा, आपको लग रहा है कि कोई गिल्ट था समर्थ के चेहरे पे?
3: नॉट एट ऑल. बॉडी लैंग्वेज का एक्सपर्ट नहीं हूं मैं, बट आई कैन मेक आउट कि जब आदमी खड़ा है उसको कैसा लग रहा है. तो देयर वाज नो रिमोर्स. एक होता है कि उनकी बीवी के जाने का, अगर किसी आपके करीबी के जाने का जो रिमोर्स होता है, दैट वाज कम्प्लीटली मिसिंग. इट वाज एविडेंट, वेरी एविडेंट फ्रॉम हिज बॉडी लैंग्वेज दैट ही इज वेरी रिलैक्स्ड. और वहां पे अपने वो दिखा रहे हैं, जानबूझ के हंसते हैं जो लोग, उनमें से एक.
0: And while Samarth Singh has surrendered to the police, it is his mother, Giribala Singh, that has been brought to the dock by the Madhya Pradesh government. Yesterday, the government moved court against Giribala's anticipatory bail, alleging that it was granted in haste. The Madhya Pradesh government further argued that there are serious concerns of evidence tampering and obstruction of the investigation. While Giribala Singh refused to take NDTV's question, the question main is, after Samarth's manhunt, the focus is now shifting to Giribala, the mother-in-law of Trisha Sharma, with the next court hearing on May 25th. Here is a report that's been filed by my colleague Akash from outside Giribala's residence in Bhopal. Take a look.
5: भोपाल में गिरिबाला सिंह के घर पर वकीलों की टीम पहुंची है, क्योंकि आज समर्थ की कोर्ट में पेशी होनी है. और इसके ठीक पहले जो वकीलों की पूरी टीम है वो गिरिबाला सिंह, जो पूर्व जज हैं, उनके घर के अंदर जाती हुई दिख रही है. हालांकि उनका केस गिरिबाला सिंह खुद लड़ेंगी या वकील लड़ेंगे, इस बात को लेकर वकीलों में कोई बातचीत नहीं की है. ये समर सिंह और गिरिबाला सिंह का घर है. और अभी, क्योंकि कल भी गिरिबाला सिंह लगातार जो वकीलों से सलाह है वो

0: will be hearing on Monday.
1: Absolutely. Thank you very much, Rupur. All eyes now stay on the crucial Supreme Court hearing that will be taking place on Monday, that is 25th of May. Thank you very much, Rupur, for getting us those details. Now, 11 days after Trisha Sharma's death, absconding accused in the case, Trisha's husband is finally behind bars. Bhopal court has sent Samarth Singh to police remand for 7 days after he was brought to Bhopal from Jabalpur earlier today. Samarth Singh's police remand came a day after he made a dramatic appearance at the Jabalpur court to surrender, triggering chaos and confusion in the courtroom. Now, police are investigating several key angles in the case, with Samarth now in custody. The probe is now focusing on major discrepancies in the cause of death, the possible role of the family members, the rooftop access, and the exact sequence of events leading to the incident. In the latest, NDTV has accessed exclusive images of the terrace where Trisha's body was found hanging in her in-law's home. Here are some reactions coming in after Samarth Singh was sent to 7 days of police remand. Listen in.
2: As you can see right now, Samarth has been produced, and now police have been getting the 7 day remand of the Samarth, and now he has been brought back by the police, and now he would be taking back for the interrogations. And right now I can show you how the Samarth, I mean, we'll be trying to talk to Samarth where he had been for last 10 days, where he is Samarth, and questioning him for where he was for past 10 days when he came back to Jabalpur. We will try to contact him where he has been, where he was with Samarth. You can see Samarth, he is wearing scarf and every single thing, so that no interaction can be done. Samarth! So as you can see, Samarth has been brought by the...
3: पुलिस रिमांड मिली. अब ये एक्चुअली तो देखिए बहुत लेट हो गया है. 10 दिन आप रहे हैं और इस केस में दुर्भाग्य से ये हुआ है कि गिरीवाला सिंह को जमानत, अग्रिम जमानत मिलने के समय ऐसी कंडीशन नहीं लगाई गई कि वो उस घर में नहीं रह सकती. तो वो शुरू से उस घर को एंजॉय कर रही हैं. अब वहाँ पे उनके खिलाफ, समर्थ के खिलाफ जो भी एविडेंस है, साक्ष्य हो सकते हैं, उन्हें नष्ट करने की उन्हें पूरी अपॉर्चुनिटी थी. और त्विशा के अगेंस्ट कोई भी, जैसे बार बार सोशल मीडिया पे वो एलिगेशन लगा दिए कि त्विशा ड्रग्स लेती थी, तो इस चीज को साबित करने के लिए इस 12 दिन में अगर उसके कमरे में जो त्विशा यूज करती थी, उसकी अलमारी में, उसके पलंग के, उसके ब्रीफकेस में कहीं इस तरह की कोई सब्सटेंसेस रख भी दी जाती है, तो इस चीज पे लोगों को ध्यान देना चाहिए कि अब अगर इन्वेस्टिगेशन के समय ऐसी कोई चीज मिलती है तो गिरीवाला सिंह और इन लोग के पास 10-12 दिन का समय अभी तक तो है. आज भी वो उसी घर में रह रही हैं. तो ये बहुत बड़ी आज पुलिस रिमांड इनकी हुई है, लेकिन एक्चुअली उस घर को जिस दिन FIR हुई है कम से कम उस दिन लॉक कर दिया जाना चाहिए था.
4: दिन हमें मिले हैं प्रिपेयर करने के लिए फॉर द CBI टू इंटरवीन एज सून एज दे कैन. एंड ये जो हमें विंडो मिली है, इसमें CBI को जल्द से जल्द टेकअप करना चाहिए, चार्ज लेना चाहिए इस केस का, ताकि फेयर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो सके.
5: और CBI जो रिकमेंडेशन सरकार ने की, आपको लगता है कि जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जानी चाहिए?
4: जी बिल्कुल, वी आर होपफुल फॉर दैट.
5: और जो आपने आज कोर्टरूम में देखा, आपको लग रहा है कि कोई गिल्ट था समर्थ के चेहरे पे?
4: नॉट एट ऑल. बॉडी लैंग्वेज का एक्सपर्ट नहीं हूं मैं, बट आई कैन मेक आउट कि जब आदमी खड़ा है उसको कैसा लग रहा है. तो देयर वाज नो रिमोर्स. एक होता है कि उनकी बीवी के जाने का, अगर किसी के आपके करीबी के जाने का जो रिमोर्स होता है, दैट वाज कम्प्लीटली मिसिंग. इट वॉज एविडेंट, वेरी एविडेंट फ्रॉम हिज बॉडी लैंग्वेज दैट इज वेरी रिलैक्स्ड. और वहां पे अपने वो दिखा रहे हैं, जानबूझ के हंसते हैं जो लोग, उनमें से एक.
1: And while Samarth Singh has surrendered to the police, it is his mother, Giribala Singh, that has been brought to the dock by the Madhya Pradesh government. Yesterday, the government moved court against Giribala's anticipatory bail, alleging that it was granted in haste. The Madhya Pradesh government further argued that there are serious concerns of evidence tampering and obstruction of the investigation. While Giribala Singh refused to take NDTV's question, the question main is, after Samarth's manhunt, the focus is now shifting to Giribala, the mother-in-law of Trisha Sharma, with the next court hearing on May 25th. Here is a report that's been filed by my colleague Akash from outside Giribala's residence in Bhopal. Take a look.
6: भोपाल में गिरिबाला सिंह के घर पर वकीलों की टीम पहुंची है, क्योंकि आज समर्थ की कोर्ट में पेशी होनी है. और इसके ठीक पहले जो वकीलों की पूरी टीम है, वो गिरिबाला सिंह जो पूर्व जज है, उनके घर के अंदर जाती हुई दिख रही है. हालांकि उनका केस गिरिबाला सिंह खुद लड़ेंगी या वकील लड़ेंगे, इस बात को लेकर वकीलों में कोई बातचीत नहीं की है. ये समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह का घर है. और अभी, क्योंकि कल भी गिरिबाला सिंह लगातार

0: all of the family members, the rooftop access, and the exact sequence of events leading to the incident. In the latest, NDTV has accessed exclusive images of the terrace where Tusha's body was found hanging in her in-law's home. Here are some reactions coming in after Samar Singh was sent to 7 days of police remand. Listen in.
1: As you can see right now, Samarth has been produced, and now police have been getting the 7 day remand of the Samarth, and now he has been brought back by the police, and now he would be taking back to for the interrogations. And right now I can show you how the Samarth, I mean, we'll be trying to talk to Samarth where he had been for last 10 days, where he is Samarth, and questioning him for where he was for past 10 days when he came back to Jabalpur. We will try to contact him where he has been, where he was with Samarth. You can see Samarth, he is wearing scarf and every single thing, so that no interaction can be done. Samarth! So as you can see, Samarth has been brought by the...
2: पुलिस रिमांड मिली. अब ये एक्चुअली तो देखिए बहुत लेट हो गया है. 10 दिन आप रहे हैं और इस केस में दुर्भाग्य से ये हुआ है कि गिरीबाला सिंह को जमानत, अग्रिम जमानत मिलने के समय ऐसी कंडीशन नहीं लगाई गई कि वो उस घर में नहीं रह सकती. तो वो शुरू से उस घर को एंजॉय कर रही हैं. अब वहाँ पे उनके खिलाफ, समर्थ के खिलाफ जो भी एविडेंसेस, साक्ष्य हो सकते हैं, उन्हें नष्ट करने की उन्हें पूरी अपॉर्चुनिटी थी. और त्विशा के अगेंस्ट कोई भी, जैसे बार बार सोशल मीडिया पे वो एलिगेशन लगा दी है कि त्विशा ड्रग्स लेती थी, तो इस चीज को साबित करने के लिए इस 12 दिन में अगर उसके कमरे में जो त्विशा यूज करती थी, उसकी अलमारी में, उसके पलंग के, उसके ब्रीफकेस में कहीं इस तरह की कोई सब्सटेंसेस रख भी दी जाती है, तो इस चीज पे लोगों को ध्यान देना चाहिए कि अब अगर इन्वेस्टिगेशन के समय ऐसी कोई चीज मिलती है तो गिरीबाला सिंह और इन लोग के पास 10-12 दिन का समय अभी तक तो है. आज भी वो उसी घर में रह रही है. तो ये बहुत बड़ी आज पुलिस रिमांड इनकी हुई है, लेकिन एक्चुअली उस घर को जिस दिन FIR हुई है कम से कम उस दिन लॉक कर दिया जाना चाहिए था.
3: 7 दिन अभी मिले हैं प्रिपेयर करने के लिए फॉर द CBI टू इंटरवीन एज सून एज दे कैन. एंड ये जो हमें विंडो मिली है इसमें CBI को जल्द से जल्द टेकअप करना चाहिए, चार्ज लेना चाहिए इस केस का, ताकि फेयर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो सके.
4: और CBI जो रिकमेंडेशन सरकार ने की, आपको लगता है कि जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जानी चाहिए?
3: जी बिल्कुल, वी आर होपफुल फॉर दैट.
4: और जो आपने आज कोर्टरूम में देखा, आपको लग रहा है कि कोई गिल्ट था समर्थ के चेहरे पे?
3: नॉट एट ऑल. बॉडी लैंग्वेज का एक्सपर्ट नहीं हूं मैं, बट आई कैन मेक आउट कि जब आदमी खड़ा है उसको कैसा लग रहा है. तो देयर वाज नो रिमोर्स. एक होता है कि उनकी बीवी के जाने का, अगर किसी आपके करीबी के जाने का जो रिमोर्स होता है, दैट वाज कम्प्लीटली मिसिंग. इट वॉज एविडेंट, वेरी एविडेंट फ्रॉम हिज बॉडी लैंग्वेज दैट ही इज वेरी रिलैक्स्ड. और वहां पे अपने वो दिखा रहे हैं, जानबूझ के हंसते हैं जो लोग, उनमें से एक.
0: And while Samarth Singh has surrendered to the police, it is his mother, Giribala Singh, that has been brought to the dock by the Madhya Pradesh government. Yesterday, the government moved court against Giribala's anticipatory bail, alleging that it was granted in haste. The Madhya Pradesh government further argued that there are serious concerns of evidence tampering and obstruction of the investigation. While Giribala Singh refused to take NDTV's question, the question main is, after Samarth's manhunt, the focus is now shifting to Giribala, the mother-in-law of Twisha Sharma, with the next court hearing on May 25th. Here is a report that's been filed by my colleague Akash from outside Giribala's residence in Bhopal. Take a look.
5: भोपाल में गिरिबाला सिंह के घर पर वकीलों की टीम पहुंची है, क्योंकि आज समर्थ की कोर्ट में पेशी होनी है. और इसके ठीक पहले जो वकीलों की पूरी टीम है, वो गिरिबाला सिंह जो पूर्व जज है उनके घर के अंदर जाती हुई दिख रही है. हालांकि उनका केस गिरिबाला सिंह खुद लड़ेंगी या वकील लड़ेंगे, इस बात को लेकर वकीलों में कोई बातचीत नहीं की है. ये समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह का घर है. और अभी, क्योंकि कल भी गिरिबाला सिंह लगातार जो वकीलों से सलाह है वो ले रही थी, और आज भी वकीलों की टीम पहुंची है जिससे वो लीगल एडवाइस लेंगी और इस बात पर सलाह मशवरा की जाएगी कि 25 तारीख, क्योंकि उनको नोटिस भी दिया गया है कोर्ट के समक्ष पेश होना, जो पुलिस से जांच में सहायता नहीं कर रही है. इसके साथ ही समर्थ के बेल को लेकर भी तमाम जो बातें हैं वो जानकारियाँ जुटानी है, चर्चा करनी है, क्योंकि वो खुद भी एक जज रही हैं, तो बहुत सारी कानूनी जानकारियाँ उनके पास भी. अब देखना होगा कि जो गिरिबाला की अग्रिम जमानत याचिका है उस पर आगे क्या कुछ फैसला होता है.
6: I have an absolute rock star panel right here.
7: We know about
6: Melody, the chocolates, right? The toffees. And that's become such a big thing. This is the kind of branding and marketing you can't buy unless you can

0: questioning him for where he was for past 10 days when he came back to Jabalpur. We will try to contact him where he has been, where he was with Samad. You can see Samad, he is wearing scarf and every single thing so that no interaction can be done. So as you can see, Samad has been brought by the...
1: पुलिस रिमांड मिली. अब ये एक्चुअली तो देखिए बहुत लेट हो गया है. 10 दिन आप रहे हैं और इस केस में दुर्भाग्य से ये हुआ है कि गिरीबाला सिंह को जमानत, अग्रिम जमानत मिलने के समय ऐसी कंडीशन नहीं लगाई गई कि वो उस घर में नहीं रह सकती. तो वो शुरू से उस घर को एंजॉय कर रही हैं. अब वहाँ पे उनके खिलाफ, समर्थ के खिलाफ जो भी एविडेंस साक्ष्य हो सकते हैं उन्हें नष्ट करने की उन्हें पूरी अपॉर्चुनिटी थी. और त्विशा के अगेंस्ट कोई भी, जैसे बार बार सोशल मीडिया पे वो एलिगेशन लगा दिए कि त्विशा ड्रग्स लेती थी, तो इस चीज़ को साबित करने के लिए इस 12 दिन में अगर उसके कमरे में जो त्विशा यूज़ करती थी, उसकी अलमारी में, उसके पलंग के, उसके ब्रीफकेस में कहीं इस तरह की कोई सब्सटेंसेस रख भी दी जाती है, तो इस चीज़ पे लोगों को ध्यान देना चाहिए कि अब अगर इन्वेस्टिगेशन के समय ऐसी कोई चीज़ मिलती है तो गिरीबाला सिंह और इन लोग के पास 10-12 दिन का समय अभी तक तो है. आज भी वो उसी घर में रह रही हैं. तो ये बहुत बड़ी आज पुलिस रिमांड इनकी हुई है, लेकिन एक्चुअली उस घर को जिस दिन FIR हुई है कम से कम उस दिन लॉक कर दिया जाना चाहिए था.
2: दिन हमें मिले हैं प्रिपेयर करने के लिए फॉर द CBI टू इंटरवीन एज सून एज दे कैन. एंड ये जो हमें विंडो मिली है इसमें CBI को जल्द से जल्द टेकअप करना चाहिए, चार्ज लेना चाहिए इस केस का, ताकि फेयर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो सके.
3: और CBI जो रिकमेंडेशन सरकार ने की, आपको लगता है कि जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जानी चाहिए?
2: जी बिल्कुल, वी आर होपफुल फॉर दैट.
3: और जो आपने आज कोर्टरूम में देखा, आपको लग रहा है कि कोई गिल्ट था समद के चेहरे पे?
2: नॉट एट ऑल. बॉडी लैंग्वेज का एक्सपर्ट नहीं हूं मैं, बट आई कैन मेक आउट कि जब आदमी खड़ा है उसको कैसा लग रहा है. तो देयर वाज नो रिमोर्स. एक होता है कि उनकी बीवी के जाने का, अगर किसी आपके करीबी के जाने का जो रिमोर्स होता है, दैट वाज कम्प्लीटली मिसिंग. इट वाज एविडेंट, वेरी एविडेंट फ्रॉम हिज बॉडी लैंग्वेज दैट ही इज वेरी रिलैक्स्ड. और वहां पे अपने वो दिखा रहे हैं, जानबूझ के हंसते हैं जो लोग, उनमें से एक.
4: And while Samarth Singh has surrendered to the police, it is his mother, Giribala Singh, that has been brought to the dock by the Madhya Pradesh government. Yesterday, the government moved court against Giribala's anticipatory bail, alleging that it was granted in haste. The Madhya Pradesh government further argued that there are serious concerns of evidence tampering and obstruction of the investigation. While Giribala Singh refused to take NDTV's question, the question main is, after Samarth's manhunt, the focus is now shifting to Giribala, the mother-in-law of Twisha Sharma, with the next court hearing on May 25th. Here is a report that's been filed by my colleague Akash from outside Giribala's residence in Bhopal. Take a look.
5: भोपाल में गिरिबाला सिंह के घर पर वकीलों की टीम पहुंची है, क्योंकि आज समर्थ की कोर्ट में पेशी होनी है. और इसके ठीक पहले जो वकीलों की पूरी टीम है, वो गिरिबाला सिंह जो पूर्व जज है उनके घर के अंदर जाती हुई दिख रही है. हालांकि उनका केस गिरिबाला सिंह खुद लड़ेंगी या वकील लड़ेंगे, इस बात को लेकर वकीलों में कोई बातचीत नहीं की है. ये समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह का घर है. और अभी, क्योंकि कल भी गिरिबाला सिंह लगातार जो वकीलों से सलाह है वो ले रही थी, और आज भी वकीलों की टीम पहुंची है जिससे वो लीगल एडवाइस लेंगी और इस बात पर सलाह मशवरा की जाएगी कि 25 तारीख, क्योंकि उनको नोटिस भी दिया गया है कोर्ट के समक्ष पेश होना, जो पुलिस से जांच में सहायता नहीं कर रही है. इसके साथ ही समर्थ के बेल को लेकर भी तमाम जो बातें हैं वो जानकारियाँ जुटानी है, चर्चा करनी है, क्योंकि वो खुद भी एक जज रही हैं तो बहुत सारी कानूनी जानकारी उनके पास भी. अब देखना होगा कि जो गिरिबाला की अग्रिम जमानत याचिका है उस पर आगे क्या कुछ फैसला होता है.
6: Check the audio, high rate, check the audio.
7: Let's do it.
8: Breaking story, we're jumping straight into it.
9: We've got a picture of the letter.
10: What is in your letter?
11: You can never predict what's going to happen in Tamil Nadu politics.
12: 21 days in Kashmir. Unfiltered list of things I saw and observed on the ground.
13: Very special ground report from the line of control. There were some children who've lost limbs in the shelling.
14: For a country that has fought so many wars in the mountains and at high altitude.
4: Now moving on, a shocking rape and murder case of a 10-year-old in Coimbatore has shook the conscience of the state. With the new government under Chief Minister C. Joseph Vijay, the corpse said that

0: Samarth where he had been for last 10 days, where he is Samarth, and questioning him for where he was for past 10 days when he came back to Jabalpur. We will try to contact him where he has been, where he was with Samarth. You can see Samarth, he is wearing scarf and every single thing so that no interaction can be done. We will try to question him. So as you can see, Samarth has been brought by the
1: पुलिस रिमांड मिली. अब ये एक्चुअली तो देखिए बहुत लेट हो गया है, 10 दिन आप रहे हैं, और इस केस में दुर्भाग्य से ये हुआ है कि गिरीबाला सिंह को अग्रिम जमानत मिलने के समय ऐसी कंडीशन नहीं लगाई गई कि वो उस घर में नहीं रह सकती. तो वो शुरू से उस घर को एंजॉय कर रही हैं. अब वहाँ पे उनके खिलाफ, समर्थ के खिलाफ जो भी एविडेंस है, साक्ष्य हो सकते हैं, उन्हें नष्ट करने की उन्हें पूरी अपॉर्चुनिटी थी. और त्विशा के अगेंस्ट कोई भी, जैसे बार बार सोशल मीडिया पे वो एलिगेशन लगा दी है कि त्विशा ड्रग्स लेती थी, तो इस चीज को साबित करने के लिए इस 12 दिन में अगर उसके कमरे में जो त्विशा यूज करती थी, उसकी अलमारी में, उसके पलंग के, उसके ब्रीफकेस में कहीं इस तरह की कोई सब्सटेंसेस रख भी दी जाती है, तो इस चीज पे लोगों को ध्यान देना चाहिए कि अब अगर इन्वेस्टिगेशन के समय ऐसी कोई चीज मिलती है तो गिरीबाला सिंह और इन लोग के पास 10-12 दिन का समय अभी तक तो है. आज भी वो उसी घर में रह रही हैं. तो ये बहुत बड़ी आज पुलिस रिमांड इनकी हुई है, लेकिन एक्चुअली उस घर को जिस दिन FIR हुई है कम से कम उस दिन लॉक कर दिया जाना चाहिए था.
2: दिन हमें मिले हैं प्रिपेयर करने के लिए फॉर द CBI टू इंटरवीन एज सून एज दे कैन. एंड ये जो हमें विंडो मिली है इसमें CBI को जल्द से जल्द टेकअप करना चाहिए, चार्ज लेना चाहिए इस केस का, ताकि फेयर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो सके.
3: और CBI जो रिकमेंडेशन सरकार ने की, आपको लगता है कि जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जानी चाहिए?
2: जी बिल्कुल, वी आर होपफुल फॉर दैट.
3: और जो आपने आज कोर्टरूम में देखा, आपको लग रहा है कि कोई गिल्ट था समर्थ के चेहरे पे?
2: नॉट एट ऑल. बॉडी लैंग्वेज का एक्सपर्ट नहीं हूं मैं, बट आई कैन मेक आउट कि जब आदमी खड़ा है उसको कैसा लग रहा है. तो देयर वाज नो रिमोर्स. एक होता है कि उनकी बीवी के जाने का, अगर किसी आपके करीबी के जाने का जो रिमोर्स होता है, दैट वाज कम्प्लीटली मिसिंग. इट वॉज एविडेंट, वेरी एविडेंट फ्रॉम हिज बॉडी लैंग्वेज दैट ही इज वेरी रिलैक्स्ड. और वहां पे अपने वो दिखा रहे हैं, जानबूझ के हंसते हैं जो लोग, उनमें से एक.
4: And while Samarth Singh has surrendered to the police, it is his mother, Giribala Singh, that has been brought to the dock by the Madhya Pradesh government. Yesterday, the government moved court against Giribala's anticipatory bail, alleging that it was granted in haste. The Madhya Pradesh government further argued that there are serious concerns of evidence tampering and obstruction of the investigation. While Giribala Singh refused to take NDTV's question, the question main is, after Samarth's manhunt, the focus is now shifting to Giribala, the mother-in-law of Twisha Sharma, with the next court hearing on May 25th. Here is a report that's been filed by my colleague Akash from outside Giribala's residence in Bhopal. Take a look.
5: Bhopal mein Giribala Singh ke ghar par vakilon ki team pahunchi hai, kyunki aaj Samarth ki court mein peshi honi hai. और इसके ठीक पहले जो वकीलों की पूरी टीम है वो गिरीबाला सिंह, जो पूर्व जज है, उनके घर के अंदर जाती हुई दिख रही है. हालांकि उनका केस गिरीबाला सिंह खुद लड़ेंगी या वकील लड़ेंगे, इस बात को लेकर वकीलों में कोई बातचीत नहीं की है. ये समर्थ सिंह और गिरीबाला सिंह का घर है, और अभी क्योंकि कल भी गिरीबाला सिंह लगातार जो वकीलों से सलाह है वो ले रही थी, और आज भी वकीलों की टीम पहुंची है जिससे वो लीगल एडवाइस लेंगी और इस बात पर सलाह मशवरा की जाएगी कि 25 तारीख क्योंकि उनको नोटिस भी दिया गया है कोर्ट के समक्ष पेश होना, जो पुलिस से जांच में सहायता नहीं कर रही है. इसके साथ ही समर्थ के बेल को लेकर भी तमाम जो बातें हैं वो जानकारियाँ जुटानी है, चर्चा करनी है, क्योंकि वो खुद भी एक जज रही हैं तो बहुत सारी कानूनी जानकारी उनके पास भी. अब देखना होगा कि जो गिरीबाला की अग्रिम जमानत याचिका है उस पर आगे क्या कुछ फैसला होता है.
6: बदलता नहीं अब बढ़ता पंजाब. नवे पंजाब का नवा स्वैग लेकर आ रहा है NDTV नवा पंजाब समिट. शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरियां, विकास की हकीकत और नवा पंजाब के मिशन पर मंच साझा करेंगे सरकार के दिग्गज और पंजाबी कलाकार. देखिए मान मैजिक माननीय
4: Now moving on, a shocking rape and murder case of a 10-year-old in Coimbatore has shook the conscience of the state. With the new government under Chief Minister C. Joseph Vijay, the corps said that they are acting swiftly in the matter and that they have

0: हमें मिले हैं प्रिपेयर करने के लिए फॉर द सीबीआई टू इंटरवीन एज सून एज दे कैन, एंड ये जो हमें विंडो मिली है इसमें सीबीआई को जल्द से जल्द टेकअप करना चाहिए, चार्ज लेना चाहिए इस केस का, ताकि फेयर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो सके।
1: और सीबीआई जो रिकमेंडेशन सरकार ने की, आपको लगता है कि जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जानी चाहिए?
0: जी बिल्कुल, वी आर होपफुल फॉर दैट।
1: और जो आपने आज कोर्टरूम में देखा, आपको लग रहा है कि कोई गिल्ट था समद के चेहरे पे?
0: नॉट एट ऑल, बॉडी लैंग्वेज का एक्सपर्ट नहीं हूं मैं, बट आई कैन मेक आउट कि जब आदमी खड़ा है उसको कैसा लग रहा है, तो देयर वाज नो रिमोर्स। एक होता है कि उनकी बीवी के जाने का, अगर किसी आपके करीबी के जाने का जो रिमोर्स होता है, दैट वाज कम्प्लीटली मिसिंग। इट वाज एविडेंट, वेरी एविडेंट फ्रॉम हिज बॉडी लैंग्वेज दैट ही इज वेरी रिलैक्स्ड, और वहां पे अपने वो दिखा रहे हैं, जानबूझ के हंसते हैं जो लोग, उनमें से एक।
2: And while Samarth Singh has surrendered to the police, it is his mother, Giribala Singh, that has been brought to the dock by the Madhya Pradesh government. Yesterday, the government moved court against Giribala's anticipatory bail, alleging that it was granted in haste. The Madhya Pradesh government further argued that there are serious concerns of evidence tampering and obstruction of the investigation. While Giribala Singh refused to take NDTV's question, the question main is, after Samarth's manhunt, the focus is now shifting to Giribala, the mother-in-law of Twisha Sharma, with the next court hearing on May 25th. Here is a report that's been filed by my colleague Akash from outside Giribala's residence in Bhopal. Take a look.
3: भोपाल में गिरिबाला सिंह के घर पर वकीलों की टीम पहुंची है, क्योंकि आज समर्थ की कोर्ट में पेशी होनी है, और इसके ठीक पहले जो वकीलों की पूरी टीम है वो गिरिबाला सिंह जो पूर्व जज है उनके घर के अंदर जाती हुई दिख रही है। हालांकि उनका केस गिरिबाला सिंह खुद लड़ेंगी या वकील लड़ेंगे, इस बात को लेकर वकीलों में कोई बातचीत नहीं की है। ये समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह का घर है, और अभी क्योंकि कल भी गिरिबाला सिंह लगातार जो वकीलों से सलाह है वो ले रही थी, और आज भी वकीलों की टीम पहुंची है जिससे वो लीगल एडवाइस लेंगी, और इस बात पर सलाह मशवरा की जाएगी कि 25 तारीख क्योंकि उनको नोटिस भी दिया गया है कोर्ट के समक्ष पेश होना, जो पुलिस से जांच में सहायता नहीं कर रही है, इसके साथ ही समर्थ के बेल को लेकर भी तमाम जो बातें हैं वो जानकारियाँ जुटानी है, चर्चा करनी है, क्योंकि वो खुद भी एक जज रही हैं, तो बहुत सारी कानूनी जानकारी उनके पास भी। अब देखना होगा कि जो गिरिबाला की अग्रिम जमानत याचिका है उस पर आगे क्या कुछ फैसला होता है।
4: We at NDTV traveled across the length and breadth of West Bengal. This was the hottest election in all.
2: Now moving on, a shocking rape and murder case of a 10-year-old in Coimbatore has shook the conscience of the state with the new government. Under Chief Minister C. Joseph Vijay, the corps said that they are acting swiftly in the matter and that they have arrested two accused in the case. The NCW, meanwhile, has also condemned it and has taken the Tamil Nadu corps to submit action, taken report in 7 days. While Chief Minister Vijay has assured stringent punishment, his political rivals have now taken a dig at the government, where they say that the law and order are in shambles in the state. Couple of reactions coming in on that story. Listen in.
5: During the course of interrogation, the accused Karthi confessed that he had lured the child, sexually assaulted her, and subsequently murdered her in a coconut grove near Kannampalayam, Kollam. Further investigation also revealed the involvement of one another accused, namely Mohan, aged 30 years, son of Ramasamy of Bharathipuram, Palapalayam, which is also the neighbourhood of the victim's house. He had allegedly assisted the main accused, Karthi. So he was arrested and remanded to judicial custody. The accused Karthi has been admitted to the Coimbatore Government Medical College Hospital for further treatment. As the case pertains to assault of a minor child, the case is being altered to include the provisions of POKSO Act, and stringent action is being undertaken.
6: Yes, it is a very saddest thing. Definitely, like, we wanted strict actions to be taken. Definitely, CM has already asked all the officers to take the right action. It is in progress.
7: The situation in the state of Tamil Nadu in the last 10 days, the number of murders, assault against women, as pointed out by our leader, Mr. Udayanidhi Stalin, it's around 30, more than 30.